फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसका अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हे हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का चिंतन।
5: यदि ये कहा जाए कि व्यक्ति यदि जीवित है तो केवल संवाद के ही कारण, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि संवादहीन व्यक्ति की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। मूक बधिर व्यक्ति भी अपनी भावना, अपना संवाद इशारों से प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि जलचर, थलचर, नभचर, दुनिया का ऐसा कोई जीवधारी नहीं है जो संवाद से परे हो। आप प्रकृति के किसी भी सुरम्य वन में, पहाड़ों की तराई में जाकर देखिए, वहां विविध प्रकार की आवाजें आपको सुनाई देंगी। पक्षियों का कलरव, चिड़ियों का चहचहाना, बतख, मोर, तोता, पपीहा आदि पशु पक्षियों की विभिन्न प्रकार की ध्वनि सब संवाद ही तो हैं। ये अलग बात है कि हम इनकी बोलियों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इनकी भाषा को समझने का मात्रा रखते हैं। आप पर्वत शिखर से बहती हुई झरनों की आवाज सुनिए, नदी की कलकल ध्वनि सुनिए, ये सभी संवाद के ही स्वरूप हैं। गाय का रंभाना, गधों का रेंकना, हाथी का चिंघाड़ना, शेर का दहाड़ना आदि सब संवाद के अंतर्गत ही आते हैं। आप किसी रेगिस्तान में चले जाइए, गर्मी के दिनों में आपको एक सुमधुर संगीत सुनाई देगा। कहने का तात्पर्य कि सृष्टिकर्ता ने संवादहीन किसी प्राणी को रचा ही नहीं। आखिर संवाद का जन्म कैसे होता है, इन पंक्तियों में देखिए। दो आत्मा का मधुर मिलन हो याद जन्म लेता है, परमपिता के आगे बस फरियाद जन्म लेता है। सुख दुख की परछाई सहती जीवन की बगिया में, नयन नयन से मिल जाए संवाद जन्म लेता है। अब हम परमपिता की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कहलाने वाले मनुष्य के संवाद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करें। वैसे अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य न जाने कितनी भाषाओं का ज्ञाता है, जबकि अन्य जीवधारी केवल एक ही भाषा जानते हैं। संवाद के माध्यम भी दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट, SMS न जाने कितने हैं। तब तो इन्हें इस क्षेत्र में अग्रणी होना चाहिए, लेकिन विसंगति यही है कि संवाद के अनेक साधन होते हुए भी इंसान शनै शनै संवादहीन होता जा रहा है। आप किसी मेगा सिटी में जाकर देखें, एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति दूसरे फ्लैट में रहने वाले का नाम ही नहीं जानता, चाहे उनके घर की दीवारें जुड़ी हुई क्यों न हो। रिजर्वनेस बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कोई किसी से तब तक बात नहीं करेगा जब तक कि उसका कोई स्वार्थ न हो। सामने कोई चिर परिचित मिल जाए या दिख जाए तो औपचारिकता के बतौर ही कुछ बात कर लें, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अनजान बनकर निकल जाएंगे, जैसे कुछ देखा ही नहीं। बस यही कारण है कि सौहार्द्रता, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। परिचय का दायरा भी सिमटता जा रहा है। एक जमाना वो भी था जब बात करने के लिए लोग लालायित रहते थे, रास्ता चलते ही जयराम जी की नमस्कार अवश्य किया करते थे, पूरे मोहल्ले की जानकारी रहती थी उन्हें। शाम को चौपाल में लोग एकत्रित होते, उस एक दो घंटे की गपशप में सारे दिन की थकान मिट जाती। आज इतिहास की बातें हो गई हैं सब। खैर, यहां तक तो एक बार चल सकता है। अब इसका एक और पहलू देखें जिसके कारण मनुष्य पतोन्मुखी होता जा रहा है। बढ़ते संवादहीनता ने आज घर में ही अपना घर बना लिया है। परिवार के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ संवाद का न होना निश्चयात्मक रूप से एक गंभीर परिणाम की ओर संकेत करता है। पिता पुत्र के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई भाई के साथ, सास बहू के साथ यदि बात न करे, सामंजस्य बनाए न रखें, तब सोचिए कैसे विषम स्थिति निर्मित हो जाएगी। आज हम मनन करें, चिंतन करें, कहीं हमारे जीवन में संवादहीनता तो नहीं आ रही। आत्मीय जनों का चरण स्पर्श करना, आलिंगन करना, माथा चूमना, हाथ मिलाना, ये सब संवाद के अंतर्गत ही आते हैं। अपनी भावना को प्रकट करने का माध्यम है ये सब। केवल वाणी द्वारा उच्चारित शब्द ही संवाद नहीं है, आंखों के इशारे से भी हम अपनी भावना प्रकट करते हैं। तात्पर्य ये है कि एक विवेकवान प्राणी होने के नाते हम संवाद बनाए रखें। विचार करें, हमारे जीवन में कहीं संवादहीनता तो नहीं है।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर। इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीराबाई की रचना को लता मंगेशकर के स्वर में। संगीत पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का है।

रस संगीत यात्रा संपूर्ण सोम बजे और दोपहर

0: ऐप मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
8: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
8: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
7: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
8: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
9: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: लता मंगेशकर के स्वर में मीराबाई की रचना को अभी आप सुन रहे थे। संगीत था पंडित हृदयनाथ मंगेशकर का। इस भक्ति गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कृषि संबंधी जानकारी कार्यक्रम कृषि चर्चा में, जिसमें आज चर्चा का विषय है नवीन बाग लगाने की तैयारी। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर B.S. राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़।
1: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि अभी जो है मई और जून का जो है समय चल रहा है, और इस समय जो है किसान भाई उद्यानिकी फसलों के लिए जो नए बगीचे लगाने चाहते हैं उसकी तैयारी का उपयुक्त समय है। तो जो भी किसान भाई जो है नए बगीचे लगाने चाहते हैं, वो इस समय जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार से करना है, तो उसमें सबसे पहले जो है जो स्थल का चुनाव आता है कि बगीचे के लिए जो है किस प्रकार की जो है खेत का चयन करें। जब खेत का चयन हो जाता है उसके बाद जो है बात आती है कि जो मिट्टी का नमूना जो है मिट्टी का सैंपल। जब अपन बात करते हैं बगीचे वाल लगाने के लिए जो है मिट्टी का सैंपल कम से कम 3 फीट गहराई से लिया जाता है, क्योंकि जो है पेड़ पौधे उनकी जड़ें 4 से 5 फीट गहराई तक जाती हैं। तो इसके लिए जब मिट्टी का नमूना लेना है अपने को 1 एकड़ जमीन से 6 जगह से मिट्टी के नमूने लेने हैं, 3 फीट गहराई तक जो है खोदना है, और खोदने के बाद उसमें से एक जो गड्ढा है उसमें से आधा जो है किलो मिट्टी प्रति गड्ढे के हिसाब से मिट्टी लेना है अपने को, और पूरे जो है इस मिट्टी को ऐसे एक नीचे से ही नहीं लेना, ऊपर से खुरचते हुए नीचे 3 फीट तक पूरी मिट्टी लेना है जो है, जिससे जो है जो लेयर है जो मिट्टी की सभी लेयर उसमें जो है जो परत है वो उसकी मिट्टी आए, और उस मिट्टी को फिर इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद जो है उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद टोटल जो है ऐसे 3 किलो मिट्टी अगर अपन ने ली है उसमें से आधा किलो मिट्टी को जो है रखेंगे, बाकी मिट्टी को जो है वहीं पे जो है हटा देते हैं, डाल देते हैं जो है। तो इस प्रकार से नमूना लेके और इस नमूने को फिर जो है अपन एक जो कपड़े की थैली है उसमें जो है रख के उसमें किसान की जानकारी, कृषक का नाम है, उसका मोबाइल नंबर है, और इसी के साथ साथ खेत की जो जानकारी है कौन सा खेत है जो है, इससे पहले कौन सी उसमें फसल लगाई गई है, और आने वाले समय में अपन कौन सा बगीचा उसमें लगाना चाहते हैं, ये संपूर्ण जानकारी जो है अपने को जो है उस थैली में जो है मिट्टी के सैंपल के नमूने के साथ डाल देना है, और नमूना फिर आप जहाँ चाहें वहाँ पे जो है उसको मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी करा सकते हैं आप, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जो है कृषि विभाग की उसमें भी करा सकते हैं, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी करा सकते हैं, जहाँ पे आप कराना चाहें वहाँ करा सकते। इसके बाद जो है बात आती है कि जो है अपने को गड्ढे जो है खोदना है, उसका लेआउट जो है बनवाना है। लेआउट किसी भी बगीचे का जो है लेआउट है वो जो है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि बगीचा अपन जो है एक बार लगाते हैं और वो 50 साल 60 साल 30 साल लंबा समय तक चलता है, तो इसकी प्लानिंग जो है किसान भाइयों की बहुत अच्छी जो है कृषि एक्सपर्ट के साथ बैठकर ही जो है उनको बनाना चाहिए, उन्हीं से जो है हेल्प लेना चाहिए। तो अपन अगर सपोज आम का बगीचा लगाना चाहते हैं तो आम के बगीचे को उसमें जो है 2 प्रकार की जो है किस्में हैं जो है, एक सघन जो है किस्में हैं जो है जो डार्क किस्म बोलते हैं जिसको, जैसे आम्रपाली की अगर बात करेंगे तो उसको अपन जो है ऐसे 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं जो, तो इसमें अपन ऐसे 4 मीटर है 5 मीटर है इस हिसाब से जो है गड्ढे से गड्ढे की दूरी ले सकते हैं जो है, और लाइन के लाइन की दूरी। अगर दूसरी वैरायटी लगाना चाहते हैं, अगर आपका जो है लंगड़ा है या और दूसरी वैरायटी है, तो 5 से 7 मीटर की जो है दूरी लेनी पड़ेगी इसमें। तो इस प्रकार से अपन जो है अगर और कोई जो है अमरूद की अगर अपन पौधे लगाना चाहते हैं तो उसमें 6 से 7 मीटर की दूरी जो है लेना है। इस दूरी पे अपने को जो है 3 फीट गहरा और 2 फीट जो है चौड़ा गड्ढा अपने को खोदना है, और उस वो मिट्टी को पूरी को अपन संपूर्ण मिट्टी को बाहर निकाल लेना। आम की बात करें तो अपने रायगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट के हिसाब जिले के हिसाब से जो है ऐसे अपने यहाँ लंगड़ा है जो है, आम्रपाली है, मल्लिका है जो है, दशहरी है, इस प्रकार की जो किस्में हैं जो है वो अपन लगा सकते हैं।
0: नवीन बाग लगाने की तैयारी, इस विषय पर कृषि चर्चा अभी आप सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर BS राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि चर्चा अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। कार्यक्रम विवरण सुन रहे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम विवरण में आपसे कुछ ही पलों बाद यानी 6:40 पर सुनिएगा रामचरितमानस का भाग 31। कार्यक्रम देशगान का समय होगा 6:50 का। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का समय है सुबह 7:35 का। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:45 पर। 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी का समय होगा सुबह 8:30 का। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00 से, सुबह 11:00 से, अपराह्न 12:00 से और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण होगा सुबह 9:55 पर और 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। हमारे केंद्र से सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:10 पर। आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 का। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का समय है शाम 5:00 का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम सुनिएगा शाम 5:10 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा साइकिल चलाएं, फिट रहें, पैसे बचाएं। विश्व साइकिल दिवस पर ये विशेष बातचीत सुनिएगा। इसके साथ ही होगा क्रम घटना चक्र और क्रम तरुणों की पसंद। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर, शाम 7:00, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:00। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास

के कृषि कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा, यूरिया डीएपी संकट में गौ आधारित खेती है टिकाऊ विकल्प। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत का समय है रात्रि 8:20 का और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे सुबह 7:55 पर, सुबह 10:00 और शाम 5:05 पर और 6:05 पर। फिलहाल कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 31। गायक कलाकार हैं सुधा मल्होत्रा और रामकृष्ण चंद्रेशी। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योग को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। एक वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

तुलसीदास कृत रामचरितमानस का भाग 31 अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुधा मल्होत्रा और रामकिशन चंदेश्री और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इसके साथ ही मानस गान अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान। रचना बटुक चतुर्वेदी की है।

समूह स्वर में कार्यक्रम देशगान अभी आप सुन रहे थे। रचना बटुक चतुर्वेदी की थी। इसके साथ ही कार्यक्रम देशगान अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:55 होने को हैं। 6:55 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में व 7 बजे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झाः। अथ वार्ताः। प्रशासनेन CBSE इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा OSM इत्येतस्याः आंकिकीय मूल्यांकन प्रणाल्याः सेवानुबंध संबद्ध विषयाणां परीक्षणार्थं एक सदस्यीय समितिः संघटिता। समितेः अध्यक्षा क्षमता निर्माणायोगस्य अध्यक्ष पदारूढा एस राधाचौहानः भविष्यति। समितिः मासाभ्यन्तरे अन्तः कार्मिक प्रशिक्षण विभागाय स्वप्रतिवेदनं प्रस्तोष्यति। अत्रांतरे परिषदा गतवासरे द्वादश कक्षायाः छात्राणाम् अंक सत्यापनार्थम् उत्तरपुस्तिकानां पुनर्मूल्यांकनार्थं च अन्तर्जालपटलम् आधिकारिकरूपेण सक्रियं कृतम्। अस्माकं वार्ताहरः अवदत् यत् एषा सुविधा तेभ्यः एव छात्रेभ्यः उपलब्धा अस्ति ये खलु स्वमूल्यांकितानां उत्तरपत्राणां स्कैन इत्येताः प्रतिलिपयः प्राप्तवन्तः। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मूवर्यया उक्तं यत् शिक्षा शक्तिकरणस्य महत्वपूर्ण साधनं वर्तते। शिक्षा एव जनान् आत्मनिर्भरान् जागरूकान् क्षमांश्च कारयति। गतवासरे नवदिल्ल्यां सा जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थिनः सम्बोधयति स्म। अस्मिन् अवसरे सा उक्तवती यत् वास्तविकः विकासः तदा एव भविष्यति यदा समाजस्य सर्वे एव पक्षाः सामाजिकार्थिक शैक्षिकरूपेण विकसिताः भविष्यन्ति। सा उक्तवती यत् सर्वकारस्य छात्रवृत्तियोजनया जनजातिवर्गेभ्यः उच्चशिक्षायाः अवसराणां प्रदानेन तेषां जीवनं परिवर्तितम्। द्रौपदी मुर्मूवर्या अवदत् यत् भारते प्रतिभासम्पन्नानां छात्राणां न्यूनता नास्ति, अपितु तेषाम् अभिज्ञानं पोषणं तेभ्यः उचितमार्गदर्शनं च आवश्यकं वर्तते।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः न्यायमूर्तिः सूर्यकान्तः गतवासरे सर्वोच्च न्यायालयस्य पञ्च न्यायाधीशेभ्यः पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। न्यायमूर्तिः शीलनागो, श्रीचन्द्रशेखरः, संजीव सचदेवा, अरुणपल्ली, वरिष्ठाधिवक्त्री वी मोहना च सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशत्वेन शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। अवधेयं यत् केन्द्रेण सर्वोच्च न्यायालयीय न्यायविद समितेः अनुशंसाम् आलक्ष्य एव एतेषां नियुक्ति विषयणे स्वीकृतिः दत्ता। राष्ट्रिय पञ्चायत पुरस्कार समारोहः अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते। एते पुरस्काराः देशस्य 42 संख्याकेभ्यः उत्कृष्ट पञ्चायतेभ्यः प्रदास्यन्ते। समारोहावसरे दीनदयालोपाध्याय पञ्चायत सतत विकास पुरस्कारः इत्यस्यां श्रेण्यां 34 ग्राम पञ्चायतेभ्यः, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पञ्चायत सतत विकास पुरस्कार श्रेण्यां च 8 पञ्चायतेभ्यः पुरस्काराः प्रदास्यन्ते। भारतीयर्थ विभागेन सूचितं यत् अद्य कर्णाटकस्य आभ्यन्तरीणेषु भागेषु, केरल माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकलेषु च तीव्रवृष्टिः भविष्यति। आगामी दिवसद्वय पर्यन्तं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु तीव्र झंझावातेन सह गर्जनस्य, तडितपातस्य च संभावना वर्तते। अन्ते क्रीडा वार्तासु। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा मालिकायां गतरात्रौ इंग्लैंड देशस्य टाउनटन नगरे काउंटी क्रीडांगणे आयोजिते तृतीये अन्तिमे च द्वन्द्वे इंग्लैंडेन भारतं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इत्थम् इंग्लैंडेन 2-1 इत्येतेन स्पर्धान्तरालेन श्रृंखला जिता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने असम के मूगा रेशम के लिए मिशन स्नेहजोरी का शुभारंभ किया। ये पहल असम के विशिष्ट मूगा रेशम उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। सूरत के बारडोली कस्बे के पास कल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन की 2 बसों की टक्कर में 8 लोगों की मौत और 15 से अधिक लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने अध्यक्ष निर्वाचित होने पर डॉक्टर खलीलुर रहमान को बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान घोषणा की गई थी। तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाश। समाचारों का अनुप्रसारण अभी हो रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत की पहली पेशकश में लीजिए सुनिए टू स्टेट फिल्म का ये गाना अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा के युगल स्वर में। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: जय जोहार। भारत में रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर सप्तम पुरुषेट की ओर से आकाशवाणी रायगढ़ के सभी अधिकारियों, प्रस्तोताओं, तकनीकी टीम और समस्त श्रोताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का वह स्वर है जिसने दशकों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, संस्कृति और जागरूकता पहुंचाने का विधिक व नैतिक उत्तरदायित्व निभाया है। विशेष रूप से आकाशवाणी रायगढ़ ने स्थानीय कला और क्षेत्रीय समाचारों को जो मंच प्रदान किया है वह बहुत सराहनीय है। विधि और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए रेडियो ने सदैव समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया है। हम कामना करते हैं कि आपके यहाँ भोजन हिताय, भोजन सुखाय का संकल्प भविष्य में इसी तरह अटूट रहे और आपकी आवाज प्रगति के नए आयाम स्थापित करे। एक बार पुनः इस शानदार उपलब्धि पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी

0: अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

0: अगर तुम साथ हो, ये थे इस गीत के बोल। फिल्म तमाशा से अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, अरिजीत सिंह व साथियों के स्वर में। गीत लिखा इरशाद कामिले और संगीत था AR रहमान का। आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

हंसी तो फंसी इस फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे चिन्मयी श्रीपदा और शेखर राजीव वयानी के स्वर में। रचना अमिताभ भट्टाचार्य का था और संगीत था विशाल एन शेखर का। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गाना लीजिए, सुनिए लाल सिंह चड्ढा फिल्म से शिल्पा राव और अरिजीत सिंह के युगल स्वर में। गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आई है।

मोहित चौहान के गाए हीरोपंती फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

कार्यक्रम झरोखा सुन रहे सभी श्रोताओं को रजनी का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा में। श्रोताओं, मानव सभ्यता का विकास केवल विशाल भवनों, तीव्रग्रामी वाहनों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी चमत्कारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सरल आविष्कारों का भी इतिहास है जिन्होंने मानव जीवन को अधिक सुगम, गतिशील और समतामूलक बनाया। ऐसे ही आविष्कारों में साइकिल का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चिकित्सा विशेषज्ञ नियमित साइकिलिंग को सर्वश्रेष्ठ एरोबिक व्यायामों में शामिल करते हैं। ये हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाती है, रक्त संचार को बेहतर बनाती है और हृदय रोगों के जोखिम को कम करती है। नियमित साइकिलिंग से मोटापे पर नियंत्रण रहता है, टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम होता है, उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहता है, मांसपेशियां मजबूत होती है, जोड़ों पर न्यूनतम दबाव पड़ता है, शरीर की सहन शक्ति और संतुलन बढ़ता है। श्रोताओं, आधुनिक जीवन शैली में जहाँ अधिकांश लोग शारीरिक निष्क्रियता का शिकार है, वहाँ साइकिलिंग एक सहज और प्रभावी व्यायाम का विकल्प प्रस्तुत करती है। साइकिल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाती है। प्रकृति के बीच साइकिल चलाने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्राव पड़ता है जो तनाव और अवसाद को कम करते हैं। साइकिलिंग मानसिक तनाव को कम करती है, चिंता और अवसाद को नियंत्रित करती है, एकाग्रता बढ़ाती है, सकारात्मक सोच विकसित करती है, बेहतर नींद में सहायक होती है। इस तरह आधुनिक जीवन की मानसिक और शारीरिक, आर्थिक व प्राकृतिक चुनौतियों से निपटने का एक सरल सुलभ उपाय बन जाती है साइकिल। साइकिल विश्व का सबसे किफायती इको फ्रेंडली व्यक्तिगत परिवहन साधन है। मानव, प्रकृति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन स्थापित करने में साइकिल मददगार है। यही कारण है कि हर साल 3 जून यानी आज के दिन को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, फिटनेस का नया नाम साइकिलिंग सुबह और शाम। साइकिलिंग के लिए समय निकालें, हमेशा फिट रहें। विश्व साइकिल दिवस पर ये थी छोटी सी जानकारी। अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
3: सखी।

0: सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
2: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको, याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा।
4: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
4: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: इस संदेश के साथ ही प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर। कार्यक्रम बाजे मांदर में आज के गायक कलाकार हैं चतुर्राम साहू, कांति यादव और गीता भट्ट। लीजिए सुनिए उनके स्वर में कर्मा लोकगीत।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

चतुर्राम साहू, कांति यादव और गीता भट्ट के गाए इस कर्मा लोक गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब समाप्त होता है। FM बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। फिर एक बार हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम विवरण में। अब से कुछ ही पल बाद यानी 8:00 समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। व इसके ठीक पश्चात यानी कि 8:30 पर सुनिएगा फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 9:00, सुबह 11:00, अपराह्न 12:00 और रात्रि 9:00 से 10:00 तक। प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण किया जाएगा 9:55 पर और 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 10:10 पर, आपकी फरमाइश 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5:00 का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:10 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा साइकिल चलाएं, फिट रहें, पैसे बचाएं। विश्व साइकिल दिवस पर ये विशेष बातचीत सुनिएगा। क्रम होगा घटनाचक्र और तरुणों की पसंद का। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:00। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास के कृषि कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा यूरिया DAP संकट में गौ आधारित खेती है टिकाऊ विकल्प। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। स्थानीय सूचनाएं एवं कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम विवरण हम फिर लेकर हाजिर होंगे सुबह 10:00 और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:05 पर और 6:05 पर। कहां? आकाशवाणी रायगढ़ पर।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 8 बजने को है, 8 बजे समाचार प्रभात व 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
4: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिव कुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिव कुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिव कुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को

0: सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यसमूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए ये टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली

0: लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रा स्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, CBSE चेयरमैन और सचिव हटाए गए, OSM टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, CBSE ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं रजनी। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं आप सभी सुनने वालों का आपके अपने पसंदीदा फरमाइशी लोक गीतों के कार्यक्रम लोकरंजनी में। कार्यक्रम लोकरंजनी का पहला गाना लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर। इसके लिए हमें पत्र लिखा छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। लुधियाना पंजाब से यही लोकगीत सुनना चाहा अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से हैं वलीउल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परविनासमा फकीर। बुलंदशहर से हैं बद्रू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। बोधसरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद अंशु, बबली प्रियांशु साहू। भाटापारा से हैं दान सिंह साहू, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। दतरंगी से हैं विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना, लक्ष्मीना यदु। लालपुर से हैं लुकेश यदु और समीर यदु। इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम राजा। इसी लोकगीत के लिए हमें ईमेल किया दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। मां महामाया चौक मेंघा पारा से हैं रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु, दिव्या, दीपांजलि, दीपक और टेकलाल पटेल। जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं सुरित रमेश साहू, तारा विद्या, जितेंद्र किशन, हीरेंद्र नीलकंठ साहू, सुनीता ऋषिवन साहू, चंद्रहास, संजीव त्रिलोक साहू, रणजीत सिंह साहू और राजा। ग्राम भिलौरी बाखनलाल, जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से हैं देवव्रत साहू, राघवेंद्र राज साहू, बेबी विधि, दीपिका साहू, बेबी कविता, सृष्टि साहू बेबी, सिद्धि रिद्धि साहू और हेमंत कुमार साहू। ग्राम पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दिपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। कांकेर जिला भानाबेड़ा मुंगवाल से हैं भारत राम पटोडी, जयंती हेमंत, उमंग और मोक्ष पटोडी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर दुखिया बाई के स्वर में ये लोकगीत। कार्यक्रम का नाम है लो...

दुखिया बाई के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये फरमाइशी लोकगीत। कार्यक्रम लोक रंजनी का अगला फरमाइशी लोकगीत पसंद किया है आप सबने, इसके लिए हमें पत्र लिखा, कोशापारा जुड़वा चौक सरंगपाल सिंह, रामचंद्र देवांगन घासी, युवराज कुमारी, सुनैना पिंकी, गीता यश, पियांश, तन्वी, नीता चंद्रवती, भगवत देवांगन, पदुम देवांगन और समस्त देवांगन कुटुंब परिवार, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं, पप्पू छोटू सेन, लता पूजा और खुशी सेन, हिच्छा महासमुंद से हैं, अदालत दास वैष्णव, मानस सतीश, ऋचा गायत्री, भीष्म दास मानिकपुरी, गांव रोहासी से हैं, डगेश्वर राम साहू, गौरव साहू, नूतन साहू, अलका जानवी साहू और घनश्याम साहू, ग्राम भर्री टोला डोंडी बालौत से हैं, नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू और मुरली गौतम, भोरसुदा से हैं, भगवानी सेन, संतोषी चिराग, गजेंद्र चंद्र प्रकाश, नेहा सेन। और इसी लोकगीत के लिए हमें ईमेल किया, जिला नारायणपुर से हैं दिनेश्वरी बंजारे, मनीष कुमार बंजारे, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति कुमार संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान डुग्गू, नदौर शक्ति से हैं संतोष कुमार, अंजलि बेबी, आशी अंश चौहान, अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं जयमंत्री केमट, रामभाटा संजय मैदान रायगढ़ से हैं रोहित, जयलक्ष्मी, ऋषभ और अंश लक्ष्मी, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार से हैं जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलयुदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर जवाहरलाल बघेल और साथियों के गाए इस लोकगीत को। कार्यक्रम का नाम है लोकरंजनी।

हाय रे पैसा, ये थे इस लोकगीत के बोल जवाहरलाल बघेल और साथियों के स्वर में। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी की अगली पेशकश में। लीजिए सुनिए आप सबके ईमेल पर पसंद किया हुआ ये गाना। इसके लिए हमें ईमेल किया मिट्टू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से हैं गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास बिहारी पटेल, धमनी राजीम से हैं समेलाल धीवर, मुंडी धीवर, गोविंद धीवर, ममता धीवर, कुणाल और युवांश धीवर, बागामुड़ा कोमा खान छत्तीसगढ़ से हैं, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से हैं शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास, ओमिन उत्तरा, प्रमिला यमुना, जमुना कुमारी, अंजू मंजू और कुमारी युवती देवदास, ग्राम गोडमर्डा प्रो पोस्ट सूरेगांव तहसील से हैं, डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, देव प्रसाद देवदास, राम अवतार देवदास, अनिल कुमार देवदास, तरुण कुमार, सोनू मोनू और कुमारी ललेश्वरी देवदास, धमनी किरवई जिला गरियाबंद से हैं ईश्वरलाल धीवर, सीमाबाई खुलेश, लक्की पूर्वा, नेहा और रोशन धीवर, हटोद बाजार लाहौर से ये ईमेल किया हमें आप सब ने कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर और राजकुमारी पटेल। इसी लोकगीत के लिए हमें पत्र आया ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से हैं पोषण बंछौर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछौर, ग्राम दरचूरा से हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू, ग्राम पंचायत बटेना से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति और रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से हैं सुजान वर्मा, सोहद्रा आयुषी और कृत वर्मा, ग्राम बंगला मटिया बालौद से हैं शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रयंबिका, लीना अंशु और आशुतोष अंगारे, संबलपुर कांकेर से इसी लोकगीत की फरमाइश की पत्र आया फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी, ईशिका और तेजल यादव का, लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर मोतीदास मानिकपुरी और सुनीता साहू के गाए इस लोकगीत को।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी लोक गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम लोक रंजनी, और कार्यक्रम की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर ये लोक गीत। इसके लिए पत्र लिखा श्रृंगेरी श्री महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से है, मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु और अंकित देवांगन तिवर्ता से है, अमृतलाल देवांगन राजकुमारी अग्रवाल, अमृतलाल अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल और एएल अग्रवाल कोरदा लवन से हैं, भूधर प्रसाद वर्मा, घनश्याम प्रसाद वर्मा, गुलशन कुमार वर्मा, शिव कुमारी, हेमलता और वेद किरण वर्मा गौशाला पारा रायगढ़ से हैं, विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। इसी लोकगीत की फरमाइश आई, पत्र आया राष्ट्रपाल गजभिये तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये का बागबहरा भदरसी से हैं, पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन यवतमाल विदर्भ से, संतोष खड़ से और विनोद खड़ से हटरी चौक बिलाईगढ़ से हैं, खीखराम देवांगन, रेनू, रजनी और पिंकी देवांगन। इसी फरमाइश की हमें ईमेल किया कर्मा चौक लोहारी डी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी खुशांत और निशांत साहू नयागंज वार्ड भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा और हर्ष साहू, कुमकुम साहू और साहू छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से हैं, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, अटल रेडियो श्रोता संघ वाटोटी साकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं, नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू खपरी कुटेला भाटा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, दुर्गा प्रसाद साहू, गंगा देवी, चेतन लाल साहू, टिकेश्वरी देवी साहू, राहुल कुमार, मोहित कुमार, प्रतीक कुमार साहू, रेवाराम साहू और कौशल्या देवी साहू। ग्राम दुर्राबंधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये लोकगीत।

आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। और कार्यक्रम लोक रंजनी की अगली और अंतिम पेशकश में हम आपको सुनवा रहे हैं ममता चंद्राकर व साथियों के गाए इस लोकगीत को। इसके लिए फरमाइश की पत्र आया बाजार पारा बेमेतरा से हैं। भरत लाल सिन्हा लव कुमार लक्की सिन्हा कुर्मी पारा बेमेतरा से हैं। सुरेश कुमार सारथी पूर्णिमा सारथी पिंटू चिंटू व्रिज पूजा सारथी इसी लोकगीत की फरमाइश की पत्र आया कतियापारा जूना बिलाई बिलासपुर से। सुशील देवांगन अखिलेश देवांगन लोकेश देवांगन आशीष रवि मोनू सोनू कान्हा आदित्य देवांगन बम्भर चाटीडीह से हैं। गंगा देवी देवांगन पूनम देवांगन धनेश्वरी देवांगन महेश्वरी कुमारी मिल्की बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन इसी लोकगीत की फरमाइश की हमें ईमेल किया ग्राम धुरा भाटापारा से। अंडार नानघाट से हैं माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नीलू देवांगन संजू ओमवती ओम देवांगन वैभव देवांगन निधि देवांगन कमल विहार। रायपुर से हैं रतन जैन कोकिला जैन वैभव और चिराग जैन। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश शाबले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश और शीतल राजेश। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं रामचंद माखीजा सविता बेबी स्वाति माखीजा माही पूजा छुटकी शरद कुमार डोडवानी कीरत राय वाधवानी दीपक सुंदर उन्नति घनशानी और प्रदीप कुमार साहू। नांदघाट कातलबोर से हैं भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टीकेश्वर और ऋतु राजपूत। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये लोकगीत।

फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। सुबह के 9 बजने को है विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, शांतनु मोइत्रा का संगीत, ईशान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना पीके फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: रही है।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ। इरशाद कामिल ने लिखा है और AR रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

फिल्म खामोशियां का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, ने कोठे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है और उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
0: दोस्तों आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार हैं सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली कहते हैं मुझको रास रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया है।

की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माय गॉड में इस गाने को विशेष तौर पे शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब धूम मचाई।

1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

साक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था अभिनय में कामयाबी और वे चल पड़ी फिल्मों की पगडंडी पर। अपनी लगन और मेहनत से जल्दी ही उनकी झोली में कामयाबी के तमगे चमक उठे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

0: 5:55 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी रायपुर है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य

0: समाचार। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बालश्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित विशेष रेस्क्यू टीम द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने कहा है कि बच्चों का पुनर्वास एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष भर यह कार्य जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रीड़ा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के दो साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनियाभर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चंदेनार साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक मौसम खराब हुआ और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। इस घटना में 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। ये सभी लोग मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में काम कर रहे थे। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुपेला निवासी एक व्यक्ति ने अधिक मुनाफे का लालच देकर कई लोगों से रकम निवेश कराई और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर दिया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। रायपुर के गुड़ियारी इलाके में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के लिए कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। इस दौरान रेलवे स्टेशन से गुड़ियारी की तरफ अंडरब्रिज पर सड़क यातायात को बंद किया जाएगा। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक स्थित झिंगा बहाल क्षेत्र में मंगलवार को 2 तेज रफ्तार वाहनों के आमने सामने से हुई टक्कर में दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक वाहन चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे वाहन के चालक को बचा लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए प्रदेश में जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। और दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी किया जा रहा था आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। अब आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज की दोनों सभाओं से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले मुख्य एवं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विवरण में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी इस वक्त आपके साथ। अब से कुछ ही पलों बाद यानी कार्यक्रम सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा 10:10 पर। आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 का। विविध भारती कार्यक्रम जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे से, अपराह्न 12 बजे से और रात्रि 9 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी अमर गोट का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे का। पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम सुनिएगा 5:10 पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा साइकिल चलाएं, फिट रहें, पैसे बचाएं। विश्व साइकिल दिवस पर ये विशेष बातचीत सुनिएगा। इसके साथ ही क्रम होगा घटनाचक्र और तरुणों की पसंद का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 6:20 पर, शाम 7 बजे, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10 बजे से। कृषकों का कार्यक्रम चौपाल का समय होगा शाम 7:20 का, जिसमें आज की बात का विषय होगा इस मास के कृषि कार्य। इसके साथ ही आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा यूरिया डीएपी संकट में गौ आधारित खेती है टिकाऊ विकल्प। इसके साथ ही होगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत रात्रि 8:20 पर और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी अब जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नवलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नॉवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

इस संदेश के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत की पहली पेशकश में हम आपको सुनवा रहे हैं युविन कापसे के रचना व स्वर में ये बहुत ही प्यारा गीत। संगीत राज बब्बर का है।

0: शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

स्टेबिन की मधुर स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत रचना कुमार की और संगीत सन्नी इंदर का। कार्यक्रम सुगम संगीत की अगली पेशकश में लीजिए सुनिए पलक मुच्छाल और उत्कर्ष शर्मा के गाए इस गीत को। गीत संगीत सतीश त्रिपाठी का है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

राजबन मन के स्वर्ग में अभी आप सुन रहे थे ये गाना, रचना अराफत महमूद की और संगीता नसीम अर्जुन वाहिद का। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आप सभी को, आपकी दोस्त और होस्ट रजनी का। प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं आपके पसंदीदा गाने के साथ, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिखा गौशाला पारा रायगढ़ से है विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यीशु और अंशु गुप्ता। फोटानी चौक नरहन स्ट्रेट से है फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पारा सर, बेबी आराध्या और ललन मिश्रा। मिसर मोहल्ला नरहन बाजार से है बीके मिश्रा, गुंजन पारा सर, अमित सुमित, छोटू और लल्लू पंडित। रिंगनी छत्तीसगढ़ से है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने की फरमाइश की पत्र आया ग्राम बगबुड़वा पथरिया से है नरेन नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रणामिका और उत्कर्ष नेताम। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर खलनायक फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना। अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं, रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दु, दु, दु, दु, दु, दु, दु, दु,

0: आकाशवाणी F90।
1: जय जोहार दोस्तों, मैं महेश महिलाने रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और मैं प्रकाशवाणी केंद्र का एक श्रोता हूं। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आकाशवाणी का 90 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसमें बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं मैं सभी श्रोताओं को देना चाहता हूं और इनके सभी आकाशवाणी केंद्र के कर्मचारियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी केंद्र ने सभी जगहों पर शिक्षा, विज्ञान, समाचार, मनोरंजन, लोकगीत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वह समाचार के क्षेत्र में हो, लोकगीत हो, या किसी जागरूकता अभियान या समाज में कोई जागरूकता फैलानी हो या सरकार की कोई भी नियम नीति को बताना हो, तो आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से सभी जगहों पे सभी देश के कोने कोने में पहुंचाया गया है, जिससे बहुत लोग जागरूक हुए हैं, शिक्षित हुए हैं और विज्ञान के सारे जानकारियों को हमें बहुत बखूबी रूप से दिखाया गया है। ये हर गांव और शहर में आकाशवाणी केंद्र का रूप पहुंचा हुआ है।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम। आपकी फरमाइश और कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया आप सबने, इसके लिए पत्र लिखा पीपरपारा पालचुआ मुंगेली। छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगिता, नितिन, वंशिका और भानुप्रिया दिवाकर। श्रृंगी ऋषि महानदी से हवा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से हैं मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित देवांगन। बलौदा अकलतरा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि आनंद और समृद्धि पटेल। झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से हैं लक्ष्मण बाधवानी, विमला, हर्ष, खुशी, शुभम और कन्हैया लाल तीर्थानी। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना सैया, सौरभ, शुभम, शौर्य जैन। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर जहर फिल्म का ये गाना। श्रेया घोषाल की आवाज में गीत लिखा सईद कादरी ने और संगीत है रूप कुमार राठौड़ का।

0: AIR @90।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ और प्रोग्राम चल रहा है आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का कार्यक्रम का अगला गाना सुनवा रहे हैं हम आप सबकी पसंद पर। इसके लिए पत्र आया ताजपुर मोरबा से हैं कारी राय, मीनाकारी, पुंज राज, आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली साकरा से है जयंत कुमार बैरागी। यह गीत सुनना चाह पत्र आया जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज और नाच परवीन। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा। इंदिरा नगर रायगढ़ से हैं शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम राजा। रॉबर्टसन दर्रामुड़ा से यह गीत सुनना चाह पत्र आया लंबोदर प्रसाद पटेल का। फलेन्द्र कुमार, तेजराम, सुरेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, राम ख्याल, तुलाराम, आर्यन, अमान, रूप बसंत, विवेक, मानस, हरिशंकर देवा और श्रीधर पटेल। लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर धर्म करम फिल्म का ये बहुत ही प्यारा गाना मुकेश की आवाज में। गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम का नाम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अगला और अंतिम गीत सुनवा रहे हैं हम आप सबकी पसंद पर। इसके लिए हमें ईमेल किया पानीपत हरियाणा से हैं अनिल कटारिया, मंजू, नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा। इसी गाने की फरमाइश की पत्र आया छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि और शीतल राजेश। इसी गाने को पसंद किया सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक नवनीत राय, अमनदीप अनिल शर्मा। और कालका से हैं शुभचंद्र बजाज बिट्टा और साहिल। एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र रघुवंशी, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे। जिला मुंगेली गोलबाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से हैं संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, नेहल, पीहू छोटी, दानिश दीक्षा, संजय पूजा, रामा पूर्वी, पुलकिता खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी। लीजिए सुनिए इजाजत फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में। गीत लिखा गुलजार ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: श्रोताओं, आप भी अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इसके लिए नोट करिएगा पत्र व्यवहार का पता। पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़। पिन संख्या है 496001। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं shrota@gmail.com पर। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश से मुझे यानी अपनी दोस्त एंड होस्ट रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके पत्रों व ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। सुबह के 11 बजने को है विविध भारती कार्यक्रम। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गज़ल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज़ में, शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और ख़ान साहिब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज़्म, जो कि है उर्दू गज़ल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज़ में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गज़ल्स एल्बम से मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गज़ल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गज़ल एल्बम से तलत महमूद की आवाज़ में एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराज़े गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज़ में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज़ में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। यह है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज़ में है।

0: 11:55 होने को हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने आज रायपुर और दुर्ग में छापेमार कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम ने आज तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास और आयोग के पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा। यह दूसरा मौका है जब सीबीआई की टीम ध्रुव के निवास पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सीबीआई की दो टीमें आज सुबह से जीवन किशोर ध्रुव के भिलाई सेक्टर 10 स्थित निवास पर पहुंचकर परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर दस्तावेजों को खंगाल रही है। गौरतलब है कि इस मामले में अब तक 29 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, पूर्व सचिव जीवन किशोर ध्रुव, परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात बताया है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनियों की टीम को बधाई दी है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इंडियन ऑयल के रायपुर मंडल के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ता बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। उनके निधन की खबर से प्रशासनिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आने वाले अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ इलाकों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महेंद्रगढ़ के पास जनकपुर क्षेत्र के चरखर गांव में कल दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने रायपुर दुर्ग में की छापेमार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों में गरज चमक के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: दोपहर के 12 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय सांस्कृतिक रूप से बहुत धनी हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। राष्ट्रपति इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: खेलकूद में आज भी एक ऐसे वाला कपड़ा का बोल बना के वो खेलते हैं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे कोई अवार्ड मिले, खुशी से खेलते हैं। उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत, आज भी गांव-गांव में फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, उनके खुद के अंदर गांव-गांव के अंदर टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो एकलव्य विद्यालय को दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी जो भी और भी ट्राइबल स्कूल है, क्योंकि उनके पास टैलेंट है। आज आप ओडिशा के भुवनेश्वर में क्या किट आज फेमस क्यों है, किट नहीं किस फेमस आज वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि वहाँ ट्राइबल्स 25,000 या 30,000 बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को लिए हैं पढ़ाई।
3: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्र

0: के डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला था। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस वर्ष का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 948 अंक की गिरावट के साथ 73,702 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का पहला गीत देवदास फिल्म से। गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी के बोल हैं और सचिन देव वर्मन का है संगीत।

हम सुन रहे थे सुजाता फिल्म से यह गीत, सचिन देव बर्मन की आवाज और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस गीत को, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल और आज हम सजा कर लाए हैं यादों की महफिल सचिन देव बर्मन की यादों के साथ, उनके गाए हुए और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीतों के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

0: बम्बई का बाबू फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला नगमा, जो कि है फंटूश फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, और हम आपसे बता रहे थे कि आज हम याद कर रहे हैं यादों की महफिल में सचिन देव बर्मन को, तो उनका ही संगीत है।

0: हम सुन रहे थे चुपके चुपके चल रही पुरबैया। ये गीत हमने लिया लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों के साथ, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ फिल्म चुपके चुपके से।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज हमने सजाई है सचिन देव बर्मन के गीतों के साथ। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन की आवाज में आराधना फिल्म का यह गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने।

अभिमान फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, मजरूर सुल्तानपुरी के हैं बोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में हम सजा कर लाए हैं सचिन देव बर्मन के संगीतबद्ध किए गए और कुछ उनके गाए गए गीतों को। तो अब हम चलते हैं उनके ही द्वारा गाए गए इस गीत की ओर, जिसे लिया है गाइड फिल्म से, जिसे सचिन देव बर्मन ने गाया भी है और संगीतबद्ध भी किया है।

आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ, जो कि है अनुराग फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर ने से गाया है, आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देवबर्मन का संगीत।

0: डार्लिंग।
1: हम सुन रहे थे बड़ा सकारात्मक सा गीत बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम में सचिन देव वर्मन के ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस अगले गीत को, जिसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने, किशोर कुमार ने गाया है और मुनीम जी फिल्म से इस गीत को लिया गया है।

आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत. प्यासा फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजें हैं. साहिर लुधियानवी के बोल और सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ है. सुनते हैं इसके कुछ अंश.

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। और अब हम चलते हैं उस सफर की ओर जो बहुत सुरीला है और जिसे हम कहते हैं सुरीला सफर। मैं हूं विधि प्रवीण जैन, नमस्कार स्वीकार। आज इबारत लेकर हम आपके बीच में आए हैं और वह इबारत हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। इबारत बड़ी छोटी सी है लेकिन बात बड़े दिल की है। इबारत कुछ ऐसा कहती है कि दिल जब ये पूछता है कि वो कौन है, तो बरबस ही सामने वाले का अक्स आंखों में उभर आता है। फिर कोशिश होती है कि पहले खत के लिए, और दिल दलीलें देता है कि इशारों में उधर से कुछ कहा तो है, और कहीं एहसान दिल पर हो गया तो क्या ही बात है। और अगर उनकी नजरों की इनायत ना हुई तो कयामत ही आ जाएगी। बस ये छोटी सी इबारत उन क्षणों की, उन लम्हों की, जिन्हें हम बहुत प्यार से जीते हैं। अब इसके लिए हमारे श्रोता क्या कहते हैं, तो वह लिखते हैं कि आज की इबारत प्रेम के शुरुआती अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए दिल की बेहद खूबसूरत, नाजुक और कश्मकश भरे एहसास है। ये मोहब्बत के उस दौर का आईना है जब प्यार का पहला खत अभी कागज पर नहीं दिल की धड़कनों में लिखा जा रहा है, जब किसी का चेहरा सिर्फ आंखों में नहीं बल्कि दिल और दिमाग में छाया है। एक मीठी सी जंग शुरू है, हर इशारा एक पैगाम है, हर ख्याल एक उम्मीद है, और मन उस पहले खत के अल्फाज तलाशने लगा है जो मोहब्बत की सबसे खूबसूरत इबारत बन सके। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी श्रोता लिखते हैं कि प्रस्तुत गतिमयी इबारत में प्रणय के सुनिश्चय से संबंधित दिल के उहापोह का एक अच्छा खासा मनोविश्लेषण किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिल की दृढ़ता सामने वाले की नजर से गुफ्तगु के आधार पर न केवल टिकी हुई अपितु परिवर्धनशील भी है। इस दृष्टिकोण से आज की यह गद्यमयी इबारत वास्तव में इबारत करने योग्य है, इबादत करने योग्य है। और यह लिखते लिखते वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज के छोटे से गद्यांश से दिल में उमड़ रहे प्यार मोहब्बत के भरे बहुत ही गहरे भावों को भरा गया है। मोहब्बत का इजहार शब्दों से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से जुड़े छोटे छोटे और नाजुक इशारों से किया जाता है। आंखों की खामोश भाषा और प्यार के नजराने आपके जज्बातों को बिना कहे भी बयां कर देते हैं। बहुत बढ़िया लिखा है आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, प्रेम का इजहार आंखों के इशारों से लेकर खत लिखने तक की यात्रा में बहुत उहापोह, कश्मकश और मन में एक डर समाया होने वाली श्रृंखला रहती है। प्रेम की शुरुआत सर्वप्रथम दृष्टि मिलने यानी नयनों के बाण से होती है। बहुधा प्रेयसी की कटीली तिरछी चितवन से प्रेमी घायल होता है और प्रेम अंकुर फूट पड़ता है। इसके बाद मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग या लगाव को चेहरे के हाव भाव से लज्जा शर्म और रोमांच के माध्यम से समझा जाता है और एक दूसरे के इशारों से अपने हृदय की बात पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि एक अनजान व्यक्ति से कुछ लगा हो ही जाता है तो समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है उस शख्स में जो उस ओर खिंचा चला जाता है। कुछ चिट्ठी पत्री लिखकर देखो क्या उधर से भी कोई मेरी तरह से सोच रहा है, और अगर कोई इशारा ना मिला तो क्या होगा, मेरी तरफ से पहल ठीक रहेगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, इशारे भी होंगे, छेड़छाड़ भी होगा, खत किताबत भी होगी और फिर मिलन के गीतों की लंबी फहरिस्त भी होगी और बस सुनने में मजा आएगा। बिल्कुल सही। अब हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आज की जो इबारत है आप सही समझे हैं, बस उतने ही समय की है जितने समय में इजराहे मोहब्बत होती है, बस उससे कहने की देर होती है, पर कहने के पहले जो जो कुछ होता है वो सब कुछ आज की बातों में है। तो पहला प्रश्न है, क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, बात तो अंदर की है जो हम आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है ये बात आपकी अपनी पत्नी, आपके पति के साथ हुई हो या फिर कोई और हो जो आपकी प्रेयसी या आपका प्रेमी रहा हो,
या ये बात आपने किसी और के लिए भी महसूस की हो तो बताइएगा जरूर, ये बात क्या है आपके दिल की। कभी कभी तो कोई अभिनेता अभिनेत्री गायक गायिकाओं के लिए भी इस तरह के मन में विचार रख लेते हैं, कभी कोई खेल खिलाड़ी के लिए। तो अगर ऐसा कोई विचार मन में है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो दिल है ना बड़ा बड़ा खतरनाक है, जाने किस पे कब आ जाए। तो चलिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत के साथ हमारा एक प्रश्न आपसे जो हमेशा जुड़ा होता है। पहला प्रश्न तो हमने आपको दे दिया कि बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ है, अगर हुआ है तो बता दीजिए, बताने में शर्म कैसी। और बस इतना बता दीजिए, ये जो गीत आप सुन रहे हैं इसमें ये मीठी सी सुरीली सी आवाज किसकी है।

अब दिल जो ना कह सका वो कहने की रात आई है, और ये गीत हमने लिया भीगी रात से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और संगीत है रोशन का। हमने आपसे पूछा कि मीठी सुरीली सी आवाज़ कौन सी है, तो ऐसा कौन होगा जो ये आवाज़ नहीं पहचान पाएगा। हमारे सभी श्रोताओं ने बहुत अच्छे से पहचाना इस बात को, और बताया कि आवाज मोहम्मद रफी की है। अभी इज़राही मोहब्बत जो है, आप सबको प्यार हुआ ही होगा कभी ना कभी, किसी ना किसी समय। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात के उत्तर देना शुरू किए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रफी की भी आवाज, भीगी रात, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार नजर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, कुछ कुछ प्रेम कहानियों का आगाज झगड़े से भी होता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि कई लोग झगड़ते रहते हैं और फिर बाद में प्यार करने लगते हैं। ये भी बड़ा रोमानियत भरा एहसास है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत हम बुजुर्गों को जवां बना दिया है, कुछ गुलाबी जख्मों को हल्के से सहला गया। अब देखिए, इस बात को अगर आप ये समझें कि जीवन जो है वो शरीर बड़ा होता है, मन और आत्मा तो वही रहती है, तो उसी मन के लिए, सहलाने के लिए और उसी मन की प्यारी बातों के लिए आज का यह कार्यक्रम हमने इन जज्बातों से संजोया है। तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से लिखा कि करोड़ों लोगों की पसंदीदा आवाज़ अनमोल रत्न रफी साहब की है। बिल्कुल सही है। हमारे श्रोता ने लिखा है, हमारे हुआ तो हमारे साथ भी खुल के बता दे मत डरिए, बताना है तो बता दीजिए, अब तो समय निकल चुका है, अब क्या क्या ही फर्क पड़ने वाला है। बट पर हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे जमाने में प्रेम विवाह तो कोई सपना भी नहीं दिखता था। हाँ, अरेंज मैरिज में बगल में बैठी पत्नी के पैर की अंगुलियां बस दिखाई पड़ती थी, वह भी साथ में बैठी नाई की पत्नी झट से ढक देती थी, तो इशारे भिजारे क्या करते जी, शायद आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने विवाह के बाद एक दूसरे को देखा होगा। यानी कितनी आरजू होगी ना कि जिसके साथ विवाह हो रहा है कम से कम उसका चेहरा तो देख ले, पर वह भी एक समय की बात, कितनी अच्छी एक अलग ही अनुभूति होगी। ऐसे ही हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मोहब्बत का इजहार उनके सामने करना कोई उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन सामने से अगर कोई इनकार आ जाए तो बस इस बात का डर रहता है, इसीलिए कई लोग इजहार नहीं कर पाते। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, लेकिन राजे दिल कहने की दोपहर नहीं है, कहीं डंडे खिलवाने का इरादा तो नहीं है देखिए अब अगर वही हैं तो फिर कह सकते हैं, अगर दूसरी हैं तो कहना बनता नहीं है जी चलिए आज, हाँ जी बिल्कुल, हमारे श्रोता ने लिखा है, आज सबके ये छुपे हुए राज रहस्य जानने आई हैं। जी, जानना बनता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि ऐसा नहीं है कि ये जो प्रेम है ये केवल किसी एक तरह का ही हो। हमें भी एक बार वो बड़ा सुंदर सा एक कार्यक्रम आता था, उसमें एक संचालक हुआ करते थे, वो गायक हैं सोनू निगम, उनको देखकर हमें भी मन करता था कि इनको एक हम पत्र लिखें। और एक बार हमने लिखा भी और बाकायदा लिखा, सोनू भैया आप ऐसा ऐसा कुछ कुछ जो भी लिखना था वो लिख के उनको भेजा। एक लंबे अरसे के बाद उस चिट्ठी के बारे में जिक्र भी हुआ। तो ये प्रेम किसी भी तरह का हो सकता है, ये प्यार, ये पहला खत कैसा भी हो सकता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमें वो मिले हैं पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में हमें भी प्यार करते हैं या नहीं, पर हमने सोच लिया कि वो हमें प्यार करें या ना करें, बाकी आगे देखो क्या होता है जी। बस हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी उम्र जब मेरी जॉब लग चुकी थी, शादी से पहले मैं सोचता था कि मेरे सपनों की रानी कैसी होगी, वाकई में मेरी आंखों के सामने बरबस ही अक्स उभर आते थे, फिर माता रानी का चमत्कार हुआ, पता नहीं कैसे मेरी पूज्य सासू माँ ने मुझे लायक समझा, मुझे पसंद किया और सपनों की रानी से मुझे मिला दिया, जिसके लिए मैं अपनी पूज्य सासू माँ का ता उम्र एहसानमंद रहूँगा। रहना ही चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी आपको दी है और इतनी प्यारी बेटी, लाजवाब बेटी आपके साथ है उनकी। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और उनमें से लिखा बहुत प्यारी बात के लिए है कि हाँ, ये बहुत अच्छी इबारत है कि हे साइकिल, अपनी इनायत आपके करम कैसे भूलेंगे हम, आज विश्व साइकिल दिवस है तो उससे जुड़ा हुआ ये हमारे बीच में एक संदेश आया है कि ये साइकिल आपकी इनायत आपके कर्म कैसे भूलेंगे हम, अगर उस जमाने में ना होती तुम तो हमारे फूट जाते कर्म, खेतों के इंतजार में रहते हरदम, जब बजती पोस्टमैन की साइकिल की घंटी,
दरवाजे दौड़े दौड़े चले जाते थे हम, खत पाकर हाथों में खुश हो जाते थे हम, बोल उठते थे शुक्रिया शुक्रिया हम, अगर हमारा खत ना होता तब हो जाते थे बेदम। बहुत बढ़िया बात है। और ये खत कितने काम की चीज़ रही है उस समय, ये बात तो हम भी जानते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से इस बात को बताया कि कई सारे जो प्रेम हैं उस प्रेम के बारे में, जैसे इबारत रूपी दो दिलों की रूहानी मोहब्बत, नज़ाकत इनायत और तड़प का जिक्र है, जहां दिलों पर हुकूमत करने वाली मोहब्बत अगर रुस्मा हुई तो कयामत ही कयामत है। खतों और इशारों की दलीलों से दिल को सहलाने वाले प्रेमी युगल के प्रयास दो दिलों की विरह बेसब्री और वेदना को चित्रित करता है। रूहानियत भरी इश्क में एहसान की गुंजाइश नहीं, ये जज्बा एक दरिया है जहाँ दो दिल अक्सर बह जाते हैं। आज के सात्विक सुरीले प्रेम सफर का आनंद का इंतजार है, तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। और इस बार भी बड़ा सरल सा प्रश्न है, जैसे मैंने अपने पहले खत के बारे में बता दिया जिसके लिए लिखा था, दिल किया था, शायद आपका भी कोई खत हो जो आपने पहली बार लिखा था, बता दीजिए, डरिए मत, कोई पिटाई नहीं करने वाला। और आप ये बता दीजिए बस, अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं ये किस फिल्म का है, बताइएगा जरूर।

0: ये खूबसूरत सा गीत हम सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने। हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो आप सब बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी जल्दी लिख देते हैं, और आपने लिखा कि ये फिल्म अनजाना है, और मैंने इस बात को स्वीकार किया। हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें से हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मेरी लव मैरिज है, कुछ 56 साल पहले मैंने शादी की थी, घर वालों से मंजूरी नहीं मिली क्योंकि ये जमाना था जिसमें प्यार शब्द बोलना भी गुनाह माना जाता था, लेकिन मैं तो आज भी मानती हूँ प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम एक शुद्ध भावनात्मक अनुभव है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। इन्होंने जवानी या बुढ़ापा दोनों का जिक्र किया है। यह दिल से दिल का जुड़ाव है जो समय या सामाजिक बंधनों से नहीं बंधा है। प्यार जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। असली प्यार वह है जहाँ इंसान बिना किसी डर या दिखावे के स्वीकार कर सके। बिल्कुल सही है, हमारे श्रोता लिखते हैं, नहीं बताएंगे विदी जी आपको और सभी को, पर बहुत सारी बातें हैं, पर दिल में रहे तो ज्यादा अच्छी है। बस इतना कहेंगे कि कभी किसी को परेशान नहीं किया। हाँ, हमारे नटकट से कान्हा जी से भी प्यार का इजहार एक माँ के रूप से भी कुछ कम नहीं है। उसमें कभी कान्हा जी को डांटना, कभी नजर उतारना, कभी कभी उनको क्या खाना है, इस बात का भी एहसास कितना सच्चा प्यार है ना ये। हाँ, सच बात है, ये बहुत खूबसूरत एहसास है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसी बीच पर हमारी बहन ने लिखा है कि उसे वापस लिख रहा हूँ कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ एहसास ही मोहब्बत है, और यही हाल पहले लिखे खत में नजर आता है, और वो खत चाहे किसी को भी लिखा हो। सही बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी जो सगाई होने पर पत्नी रानी को खत लिखा, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें पाके हमने पा लिया है। क्या बढ़िया खूबसूरत, आप तो गीतों के साथ बात कर रहे थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमने खत स्कूल टाइम में लिखा था, स्कूल को ट्यूशन क्लास लगने जाते थे तो हमने लिखा था, उसके बाद फिर कभी नहीं लिखा। इन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि चर्चा हमारे प्यार का हर आमो खास में था, पर वो न समझ सके जो दिल के पास था, हमने तो अपनी हर दुआ उनके नाम कर दी, शायद उनकी तकदीर में कोई और ही खास था। क्या बात है, बढ़िया शेर है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया कि वैसे तो प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, पर मुझे जॉय मुखर्जी बहुत पसंद आती हैं। शादी वाला प्यार नहीं था लेकिन बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम जॉय ही रखा ताकि मैं जॉय मुखर्जी को हमेशा अपनी यादों में जिंदा रख सकूं। टीवी का एक कार्यक्रम आता था सुरभि, जिसमें रेणुका शाणी जी की हंसी भी मुझे बहुत पसंद थी। ये भी तो एक प्रेम का रूप है ना। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारी भी सगाई के 2 साल बाद शादी हुई, इस बीच हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी भी घूंघट में हुई, सीधा रूम में दीदार हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को खत लिखते रहे। उस समय फोन से ही बातें होती नहीं थी, मात्र एक मात्र सहारा खत हुआ करते थे। उसके बावजूद भी इतना प्रकार की आज तक मजबूत डोर बंधी हुई है। यह होती है दिल से दिल का मिलन, लेकिन आज वह बात नहीं है, जो राजा न रानी दुनिया हो गई बड़ी सयानी, कब रिश्ते टूट जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब शादी की तो शादी के पहले मैंने अपने जीवन साथी को देखा नहीं था, माँ पापा ने रिश्ता पसंद करके तय कर दिया था, हमने केवल फोटो देखा था, और 1990 से लेकर आज तक रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है, ये सदा चलता रहे, ये प्रार्थना हमारे ईश्वर से है। हमारे श्रोता ने लिखा, गांव की एक लड़की के दो छोटे भाई, लड़की को दो छोटे भाई के जरिए लेटर लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब भाई ने उसके हाथ में खत दिया तो गुस्सा हो गई, बोली आगे से ऐसे खत लिखा तो खैर नहीं है, वैसे मुझे देखने के लिए हमारे घर टीवी देखने आती थी। ये बात 1992 की है। बढ़िया है, हमारे श्रोताओं ने बहुत, एक और बात मेरी जो मैंने बात कही थी उसके लिए भी उन्होंने सराहा है कि हाँ ऐसा सबके साथ हुआ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इश्क की उस नाजुक दहलीज को दिखाती है जहाँ एक बेइंतहा उम्मीद है, दूसरी तरफ कोने का उतना बड़ा डर, दिल पूरी तरह उस इंसान के फैसले पर निर्भर हो जाता है, जहाँ उसका हाँ जिंदगी को जन्नत बना सकता है और ना कयामत ला सकता है। सही बात है, हमारे श्रोता लिखता है किसी पर दिल आ जाए तो क्या होता है। बहुत बढ़िया है, खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। आप लिखते हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, आज की जनरेशन का प्यार मोहब्बत का इजहार डिजिटल और क्रिएटिव है, तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसके लिए सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप और पर्सनलाइज्ड जेस्चर बढ़ चला है। बिल्कुल सही है,
1: तो ये बहुत सारी बातें हमारे पास आ रही हैं और इन्हीं बातों के बीच में हमारे श्रोताओं ने हमें और भी संदेश भेजे हैं। उन संदेशों में खत के लिए बात कही है। खत सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि दो दिलों के जोड़ने का एक पुल है और उन्हें गहराई तक पहुंचाने वाला सुकून है या एहसास का जरिया है जो दूरियों को मिटाकर शब्दों के जरिए जज्बातों को हमेशा के लिए अमर कर देता है। खत के शब्द लिखने के लिए रूह को पढ़ने वाले तक पहुँचते हैं, यानी कहीं बात बयां करने का सबसे अच्छा साधन है। यह बिल्कुल सही बात है। शब्द कभी पूरे नहीं पड़ते जब खत लिखने बैठो, इसलिए दिल इशारों इशारों में बहुत कुछ कहना चाहता है। और एक तो लिखते हैं कि प्यार का पहला खत लिखना आसान नहीं होता, अल्फाज कम, धड़कने ज़्यादा शामिल होती हैं, कलम कागज़ पर चलती है मगर असल में दिल अपनी बात कह रहा होता है। हश लफ्ज के साथ यह डर भी होता है कहीं भावनाएं अधूरी ना रह जाएं, हर पंक्ति में उम्मीद भी कि शायद सामने वाला उन्हें अनकहे जज्बातों को पढ़ ले जिसमें शब्द पूरी तरह बयां नहीं कर पाते। ऐसे ही कई सारे संदेश आए हैं पर ये गीत सुनवाना बनता है आपको। जब आपका जैसे एक जिक्र किया गया कि वो फिल्म देखने हमारे घर आती थी, तो ऐसा ही कुछ भी हो सकता है ना, कोई बड़ा करीबी सा। बताइए ये किस फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत हम सुन रहे थे अभी। और हमने आपसे पूछा था, बस इस फिल्म का नाम बता दीजिए, तो आप सबने सही बताया, अनीता फिल्म का ये गीत हम सुन रहे हैं। और हम बात कर रहे थे प्यार के इजहार की या फिर खत लिखने की, प्यार किसी से भी हो सकता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा कि जब मेरे बीए का एग्जाम था तो देकर अभी निकला ही था तो तुरंत विविध भारती से जुड़ गया, और ये भी तो एक प्रेम का रूप है श्रोताओं के लिए, विविध भारती के लिए बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे से ये सारे उत्तर देते देते एक और बात लिखी कि मैंने एक नाटक देखा था डोली तेरे अग्निजीस में, जिसमें सच्चा प्यार करते हो, सच्चा मान लेते हो, मिल जाता है, पर मुझे लगता है कि सच्चे आशिक को सजा मिलती है, पाई हुई मंजिल भी छूट जाती है। हो सकता है, देखिए हर किसी का अलग अलग बात होती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं कि दूसरा खत प्रेमिका को लिखा था जो आज सरकार होम मिनिस्टर बनकर हम दोनों का जीवन जिस पथ पर सुगम करने में तुला हुआ है। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने पहला प्यार अगर किसी से किया तो रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ में किया, उनको सुनकर मुझे कुछ मुझे होने लगता था, और एक शशि कपूर मुझे बेहद पसंद थे, मैं उन्हें अपने बड़े भैया की तरह मानती थी और जब उनको देखती तो खुशी होती थी, पर खत तो मैंने कभी किसी को नहीं लिखा। अभी कुछ साल पहले आनंद जी नाइट में मैं गई थी कोलकाता, आनंद जी भाई आए थे अपनी पत्नी के साथ, तो हम शशि कपूर को एक खत लिखकर उनको दिया था, पता नहीं उन तक पहुंचा या नहीं, उसके बाद शशि कपूर साहब चले जाने की खबर भी आई थी। जी, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि खत तो हमने बहुत लिखे अनगिनत, लेकिन 77 में घर से बेघर हो गए थे तो पत्र के संवाद का माध्यम था। बिल्कुल सही बात है, घर जब छूट जाता है तो फिर हम अपने परिवार वालों से भी ऐसे ही बात करते हैं। हमारे श्रोता लिखा कि आज का प्यार तो कुछ इस तरह से हो गया है कि पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया और मिलना बिछड़ना बड़ी आम बात हो गई है। जी, पहले ऐसा भी होता था ना कि गांव के मोहल्ले के किसी बच्चे को चिट्ठी दे देते थे और वो जाकर दे आता था, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं, पोस्टकार्ड इनलैंड और लिफाफे के एक जमाने में खूब लिखे और आज भी संभाल कर रखे हैं। हमारे श्रोता ने लिखा, खत पहले हमने विविध भारती के प्रोग्राम को लिखा, प्रेरणा जीजा जी थे जो मुंबई विविध भारती ऑफिस में टेक्निकल विभाग में काम करते थे। तो ऐसे ही खत आप लिखते जाइए ना, अभी तो आपके लिए खत वाला कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है और आपके खत के साथ आपके पसंदीदा गीतों को भी हम सुनाया करते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, कॉलेज में एक लड़की को खत लिखा था मगर उसने फर्स्ट ईयर के बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। ऐसा कैसा खत लिख दिया आपने। हमारे श्रोता लिखते हैं, लव मैरिज हुआ था और अभी 38 साल मना रहे हैं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हमारे श्रोता लिखते, कभी प्यार का खत नहीं लिखा, मोबाइल आ चुके हैं, दिल की बात कागज पर नहीं मैसेज में होती है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होने लगी है। बिल्कुल सही बात है। अब हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ तुम में जो स्टोरी थी वैसे भी कहानियां बनती हैं, असलियत में बिना देखे बिना मिले वाला प्यार, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, वो प्यार कितना सुंदर होता है ना जिसमें देखा ही नहीं। शादी 58 साल पहले हुई थी, तब हम पढ़ते थे, विदाई 3 साल बाद होकर पत्नी घर आई तो हम बलिहारी जाओ उन्हें खूब प्यार करते, 6 महीने बाद वह चली गई तो हम भी परेशान, वो भी, लेकिन उनकी सहेली पढ़ती थी, वो कॉलेज का नाम पूछकर एक खत डाल दिया। एक दिन एक छात्र ने एक खत दिया और कहा, ये तुम्हारा ही है ना, आज मेल बॉक्स में पड़ा मिला, जहाँ डाक किया सब चिट्ठियाँ डालकर जाता है, हमने पढ़ा सब जितने दोहे और शायरी उसे आते थे उसने लिखा था, नीचे आपकी रानी लिखा था, फिर हमने उनके गाँव में खत भेजे, खूब शायरी लिखते थे, वो सहेली उन्हें सुनाती थी, फिर 6 महीने बाद वो आ गई, फिर ऐसे खत नहीं लिखे। कितना अच्छा, कितनी अच्छी याद होती है ना ये सारी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में हमारे मेरे घर के सामने मेरी उम्र की लड़की रहती थी, मैं उसे देखता था, उसके पीछे करता था, बाद में विवाद हुआ परिवारों में और उसके बाद इन्होंने ये काम छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियां भी परेशान हो जाती हैं। और इसके साथ ही हम आपको अगला गीत सौंप रहे हैं और अगला गीत बस वही है खत के बारे में, लेकिन कई लोग हैं जो खुद खत लिखते हैं और पहले का जमाना ऐसा था जब खत लिखवाए जाते थे किसी और से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि खत उन्होंने लिखा था माता पिता और बड़ी बहन जी जी जीजा जी भांजे भांजी के लिए, तब हमने मुंबई में नेवी ज्वाइन किया था। अच्छी बात है, जब दूर रहते हैं घर से तो हम लिखते ही हैं खत, ऐसी ही बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे के लिए भेजते हैं। तो अब देखिए ये वाला गीत आप सुनिए और बताइए इसकी गायिका कौन है, और साथ में संगीतकार भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक बात और बताइएगा,
खत तो लिखा, लेकिन पहले खत का जवाब क्या आया था जरूर से साझा कीजिएगा।

0: खत दूसरे से लिखवाना कितना कठिन होता होगा ना, कि आप अपने जज्बात उसे बता रहे हैं। यही बात तो आखिर अंतरे में आशा भोसले गागा के बता रही थी, जिसे आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया। फिल्म आए दिन बाहर के हमने वही प्रश्न पूछा था कि गायिका कौन है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आशा भोसले गा रही हैं, आशा पारेख अभिनय कर रही हैं, आनंद बख्शी के गीत हैं, लक्ष्मी प्यारे का संगीत है और बहुत खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच में बिना देखे वाला प्यार भी बड़ा प्यारा होता है। ऐसा भी होता है कभी किसी की अच्छी बातों से प्यार हो, कभी किसी की आवाज़ से प्यार हो, कभी किसी की बात ना करने से प्यार हुआ हो, तो बात बहुत सारी हो सकती है। बस प्यार में सच्चाई, अपनापन हो, ना तो कोई दिखावा हो ना कोई गलत बात। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हाँ, इस गीत में बाबू बार बार बोला जा रहा है या डाक बाबू के लिए ही बोला जा रहा है। हाँ, आज के लिए बाबू शब्द का प्रयोग भी प्रेमी या के लिए किया जाता है, पर यहाँ पर डाक बाबू के लिए ही कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे श्रोता ने लिखा, गाने की खूबसूरती यही है, पर्दे पर भी आशा जी हैं और आवाज़ में भी आशा है, यानी आशा भोसले और आशा पारेख। बिल्कुल सही। हमारे श्रोता लिखते हैं, मगर इतना ज़रूर जाना है कि प्यार एक बहुत गहरा एहसास है, कि पालना ही प्यार है। प्यार महसूस किया जाता है, इसलिए प्यार किया नहीं जाता। अगर हम प्यार करते तो खुशी में हमारी खुशी होती है, मर्जी में तो जी। बिल्कुल सही बात आप कहते जा रहे हैं। इसके साथ हमारे श्रोताओं ने इस बात के लिए लिखा कि शादी के बाद जब पत्नी पीहर चली जाती थी तो उनके लेटर पैड पर पत्र लिखता था और लिफाफे को पोस्ट कर देता था उसके पास रहने वाले पड़ोसी के पते पर। पड़ोसी के पते पर क्यों, उनके पते पर क्यों नहीं, ये प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। हमारे एक श्रोता ने हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश भेजा है। जब पहला खत 2008 में विविध भारती को लिखा था, जब रेडियो पर अपना नाम सुना तो पल भर के लिए अविस्मरणीय बन गया। तभी से मैं विविध भारती मेरे जीवन का प्रिय साथी बन गई। लगभग 18 वर्षों से मैं नियमित रूप से विविध भारती सुन रहा हूँ। इसके कार्यक्रम उद्घोषकों की सभी कलाकारों की मधुर आवाजों से एक आत्मीय रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है विविध भारती केवल रेडियो सेवा नहीं बल्कि परिवार का एक हिस्सा है। इसकी हर आवाज़ मुझे अपनापन और स्नेह मिला है और यही कारण है कि मेरा लगाव दिन प्रतिदिन और गहरा होता गया है। छोटी पंक्ति, विविध भारती से मेरा रिश्ता श्रोता का नहीं बल्कि दिल का है। इसकी हर आवाज़ में मुझे अपनापन और प्यार महसूस होता है। हमें भी यही होता है। हमारे एक श्रोता ने बड़े अच्छे से अंग्रेजी में लिखा है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करके आपसे बात करती हूँ कि उनकी अरेंज मैरिज थी, यानी विवाह माता पिता ने तय किया था और दोनों गांवों के बीच में 40 किलोमीटर का अंतर था। दोनों बैंक में काम करते थे और इनके जो होने वाले सैया थे वो बड़े शर्मीले थे, इसलिए मिलने नहीं आते थे। पर इन्होंने ही एक दिन आगे रहकर बात करी, तो उन्होंने जन्मदिन पर बुलाया। फिर वो एक होटल में खाने के लिए गए, बीच पर बैठे, बातें की और साथ में एक बहुत सुंदर सी रिश्ता इनके बीच में कायम हुआ। बहुत बढ़िया बात है। अब हम चल रहे हैं एक और जज्बात की ओर, एक और गीत की ओर, और उस गीत को सौंपने के पहले हम चाहते हैं कि ये संदेश हम सुन लें।
1: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: उसे ही प्यारे आपका और हमारे बीच में आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर और इसी सफर में एक इबारत हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी कि इशारे शब्द पर हमारे दिल में कुछ यूं कहा, कुछ बातें लफ्जों में नहीं कही जाती, बस इशारों में दिल अपना हाल बयां कर देता है। एक नजर, एक मुस्कान, एक छोटी सी खामोशी, कभी कभी इतना ही काफी होता है समझने के लिए कि सामने वाले की अहमियत हमारे लिए कितनी है। इशारे वही समझ पाते हैं जिनके दिलों में अपनापन और एहसास जिंदा होते हैं। इशारे अक्सर वो कह जाते हैं जो जुबान कहने की हिम्मत नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। और इशारे से मुझे याद आया कि हम लोग कई सारे इशारे किया भी करते थे पहले, जैसे बोलते बोलते प प ब भ कुछ एक शब्द का प्रयोग हमारे उसके साथ कर लेते थे, या उल्टा बोलना या सीधा बोलना, और ऐसे हम सबके बीच में भी अपने दिल की बात कर लेते थे। ऐसा कुछ आपने किया है क्या? उल्टा सीधा बोल के या किसी एक शब्द को जोड़ के अपने दोस्तों से बात की है? फर जोड़ते थे, बर जोड़ते थे और लोगों से बात करते थे। आपने अगर ऐसा किया है तो जल्दी से बताइए। और एक और चीज़ बता दीजिए, ये जो गीत है उसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए। और आपने हमारे जैसी कोई हरकत की है सीक्रेटली बात करने की तो ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

हम सुन रहे थे कश्मीर की कली फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में ओपी नैयर के संगीत के साथ. और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया, SH बिहारी इस गीत के गीतकार हैं. अब इसके साथ मुझे एक चीज और, एक बड़ा प्यारा सा शेर याद आ रहा है जो जोश मलिहाबादी ने कहा था शायद, कि एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है. और ऐसी ही बात अगर हो जाती है तो फिर बात क्या कहनी है. और इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा कि 21 से 23 तक बहुत गहरा प्यार था, ये अपने दिल की बयां कह रहे हैं, और लंबे समय तक परिस्थितियां बदल गई. देखिए, कई बार प्यार हमें मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए. और आज हम आपसे, अच्छा, हमारे श्रोता ने लिखा है, उल्टे शब्द तो आज भी कभी कभी फन के लिए बोल लेते हैं, जलेबी को जबेली कह लेते हैं. जी, बढ़िया है, कहना चाहिए. और इशारों में बात थी. अच्छा, मैं भी बता दूं अपना नहीं, हमने इशारों में उनसे ही बात की जिनके लिए हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुना. उसके बाद तो चिट्ठी पत्री खत सब लिखना बनता ही है. आपने भी लिखे, हमने भी लिखे. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बड़े प्यार से कि ये बहुत सुंदर सा गीत है, कश्मीर की कली का, पंजाबी ठेका तबले में और संतूर पियानो सितार वायलिन का बेहतरीन इस्तेमाल इशारों इशारों में. रफी साहब लाजवाब, बहुत बढ़िया. और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बाबू बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है हमारे मालवा में, या लाड़ प्यार दर्शाता है. लेकिन आज कल पत्नियां अपने पति को लाड़ से बाबू कहाँ हो, बाबू इधर आओ, बाबू मेरे लिए आइसक्रीम ले आओ, ऐसा कहती हैं. तो ठीक है, ये प्रेम जताने वाली बात है. हमारे श्रोता लिखते हैं, जब हम फोन पर बात करते थे तो घर वाले सामने ऐसे बात करते थे, चोरी छुपे फोन नीचे रख के कॉल चल रही है. मैं बोलती थी सहेली का नाम लेकर कि उससे बात करी, फिर कॉल पर बोलते थे और फिर सो नहीं पाती थी और फोन कट जाता था. जी, कई बार ऐसा होता था ना कि हमारी बातें ऐसी होती थी किसी को पता ही नहीं पड़ता था. और चलिए, अब हम आपको अगला गीत जल्दी से सौंपना चाहते हैं क्योंकि कार्यक्रम बस समाप्ति की ओर है. और आपके साथ में जो समय बिताया वो बहुत सुंदर था. आपसे आखिरी बात कहकर मैं जा रही हूँ, और बात कुछ ऐसी कहकर जा रही हूँ कि जो ये गीत है, अगर किसी का प्यार हमें मिल जाए तो बस वो एहसान की तरह होता है, और उस एहसान के लिए लोग कई दिनों तक इंतज़ार करते हैं. तो ये कहना उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं. ये लिखते हैं कुमार बारा बंकवी. और चलते हैं इस अंतिम गीत की तरफ, आज्ञा दीजिएगा इस गीत के साथ.

0: मुझ पर।
1: और ऐसा एहसान हो जाए तो जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कुछ और फर्ज जोड़कर उनकी माँ और मौसी बातें करते थे, तो इस शब्दों पर आप जरूर बात कीजिएगा अपने लोगों से, कुछ नई तरीका सीख लीजिएगा अपने जीवन में। और आज के इस कार्यक्रम में सुरीला सफर में बस इतना ही, आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।

बिना तेल के चलती हूँ, बिना पैरों के चलती हूँ, दो पहियों पर सवारी मेरी, सबको सैर कराती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? पहचाना? हाँ सही पहचाना, मैं हूँ साइकिल। और यही साइकिल एक जमाने से हमेशा के लिए उपयोगी रही है, सबसे सस्ता और पर्यावरण के लिए अनुकूल वाहन है, दो पहियों पर चलने वाला साधन है और पैडल की सहायता से चलाया जा सकता है। गांव से लेकर शहरों तक प्रत्येक जगह साइकिल का उपयोग किया जा सकता है, यहां तक कि किया जाता है। विद्यार्थी, डाकिया, मजदूर और कई लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। ये साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा आविष्कार है, जिसमें शारीरिक ऊर्जा लगती है, ना कि कोई और तकनीकी रूप से ऊर्जा।

0: साइकिल का आविष्कार 1817 में जर्मनी के वैज्ञानिक कार्ल डर्सी ने किया था। उन्होंने सबसे पहले ऐसी दो पहियों वाली गाड़ी बनाई जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जा सकता था। बाद में पैडल, चैन और ब्रेक लगाए गए और धीरे धीरे आधुनिक साइकिल का रूप तैयार हुआ। आज दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की साइकिल बनाई जाती हैं, जैसे रेसिंग साइकिल, माउंटेन साइकिल, बच्चों की साइकिल। और ये जो साइकिल है ना, इससे नाता सबका बड़ा गहरा है। हम भारत के थोड़े से पुराने काल में जाते हैं और जब हम जाते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर साइकिल घर की लग्जरी हुआ करता है। यानी घर में अगर साइकिल है और रेडियो है तो आप बड़े रईस हैं और लोग उस साइकिल को बहुत सम्मान देते हैं। ये साइकिल बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि अगर इसी साइकिल में पीछे आटा चक्की लगा दी जाए और साइकिल को घुमाया जाए तो चक्की भी चलने लगती है, आटा भी पिसने लगता है और शारीरिक व्यायाम भी होने लगता है। नए आधुनिक उपकरणों में साइकिल को घरों में रख लिया गया है। ये साइकिल बहुत काम की चीज है, क्योंकि साइकिल इस दुनिया का सबसे प्यारा उपकरण है जो बच्चा सबसे पहले चलाता है। और जब वह दो पैरों पर उस साइकिल को चला लेता है तो खुश हो जाता है। हालांकि माता पिता को वो जो चार पहिए, जो दो एक्स्ट्रा पहिए सुरक्षा के लिए होते हैं, उन्हें हटाने में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हटता है बच्चा पंछी की तरह उड़ जाता है।
1: मैं

साइकिल बहुत अच्छी चीज है, इस वाक्य का प्रयोग कई बार किया गया। इसका कारण है इसके दो उपयोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं। ये ट्रैफिक नहीं करती क्योंकि बड़ी पतली सी, बड़ी सकरी सी होती है और बड़ी सरलता से किसी भी गली मोहल्ले से निकल जाती है, घर के एक छोटे से कोने में बड़ी सरलता से रख जाती है। और धीरे धीरे यह साइकिल अगर हम चलाते जाते हैं तो इससे बढ़िया व्यायाम हो जाता है। ये साइकिल बच्चों का बचपन है, जिसमें अपने पिता के आगे वाले डंडे पर बैठकर मेला देखने जाना ये भी तो बड़ा ख्वाब है ना। और उसी ख्वाब को, उसी सपने को जो पहले ही जी चुके हैं, फिर से जीने का आनंद ही अलग है। साइकिल, अगर इस सारी दुनिया में साइकिल का प्रयोग होने लगे तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगेगी, है ना। कितने सुंदर फूल आ जाएंगे और कितनी सुंदर बयार होगी, क्योंकि प्रदूषण होगा ही नहीं। नियमित साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शरीर को मजबूत करता है, हृदय और फेफड़े अच्छे से काम करते हैं, मोटापा भी कम हो जाता है, और कोई धुआं नहीं निकलता तो प्रदूषण नहीं है, पेट्रोल और डीजल की बचत होती है, इससे अपने देश का पैसा भी बचता है। आज के समय में प्रदूषण, ट्रैफिक, इस सबसे बचने के लिए साइकिल का महत्व अपने आप में बढ़ चुका है। कई लोग स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी साइकिल का प्रयोग करते हैं। तो बताइए कौन कौन उपयोग करेगा साइकिल का अपने जीवन में। करिए साइकिल का प्रयोग, क्योंकि यह आपके लिए, आपके पर्यावरण के लिए, आपकी प्रकृति माँ के लिए और आपकी भारत माँ के लिए, सबके लिए सुरक्षित है।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार न

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

0: स्थापन करने की भी कामना की। गृह मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
1: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newson.aiar.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीप अंसाहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसर

0: पोर्टल पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर, अमीर भाई और साथियों की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बहाने खिली तनी,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है कि आप भी मुश्किल में आ गए। मिलते ही नजर आए।

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीन गीत आदित्य की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज है, गुलजार के बोल हैं, कनू रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
2: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देख कर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक
1: है वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
2: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
1: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
2: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता। और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
1: विश्वास हो, सम्मान हो।
2: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
2: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
1: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
2: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके। तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
2: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
2: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं
2: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दुपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को, कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
2: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ।
2: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरबी
1: है,
2: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना। तो महिलाओं के साथ बड़ी समस्या की बनाए क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो फुला लेते हैं, क्या बना दिया आज मैं नहीं खाता हूँ।
2: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन। और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी।
1: अरे सारा मत बताओ।
2: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तो ये गीत सुन लेते हैं सखियों के।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
2: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही,
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल, तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतः बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी,
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा, परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल, और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल,
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वे कहते हैं भाई हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल, हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना? और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यावसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार

0: में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई, बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं, ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं, चंचल, की रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं। उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे एक श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं। और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्मपत्नी उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमें जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते

0: में नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी ज़रूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्वेता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: वाह चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का कोई जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: है। तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है जी कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घटचोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं कर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद करते
1: हैं, साइड में रख लेते हैं वो भी। हाँ।
0: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
1: होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कहेंगे।
1: बिल्कुल, ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़नी
1: चाहिए। बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे उन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है। और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वही आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता की दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकती हूँ जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चलिए अब गाना सुन ले।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझ कर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं, और
0: साइकिल दे दी जाती थी, लेकिन
1: दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां आप बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई भी है। वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चिले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चिले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कढ़ाई में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पीसें, पीसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए, वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीज़ों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
0: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
0: ये धरती ये नदियां और
1: विविध भारती और अलिया वर्जंग।
0: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा, ओके, इट्स नॉर्मल। बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है, उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी है, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी who are having hearing loss और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम hearing loss के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी hearing impairment है उनको है, and Gallaudet University में डीन रह चुके हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज़ आपने सही टाइमली एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
1: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो यस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
0: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
1: एग्जैक्टली,
0: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा।

0: कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा, वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD Act जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग, एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं। तो ये दोनों चीजें अलग हैं,
1: बिल्कुल। और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं,
0: राइट राइट राइट, हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं। एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। टू एड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है, ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है, ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा।
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी। तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है। तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें, क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके। दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल। तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना और स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प, बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं। चौथी चीज इज, जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट हो, बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी सकते हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए। अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट।
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है, क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंड सेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी री इन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इशूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं। पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे। इट कैन भी उनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज़्यादा देखा है मैंने, वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका, जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है, ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
1: बिल्कुल।
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child।
1: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, तो इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा, और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहाँ से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ओके एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा। हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड। सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है। मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी। नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा ओके पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा ओके टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में। नेक्स्ट व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं ओके वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है। अब एग्जांपल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना ओके ये शब्द है अगर खोलना तो हम तो कितनी सारी अलग अलग चीजें खोलते हैं ओके क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है ओके बुक इस तरीके से खुलती है ओके अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट ओके दैट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है, नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चले ही जाएंगे। प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा। हाँ जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं तो वो जो विजुअल थिंग्स है ओके दैट गोज इन हिज हेड ओके बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग। आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है, जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ ना कि नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड।
1: जी तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं तो इनकी समझदारी में कुछ भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं, अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है यहाँ ले जाना है, तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज, नो अंडरलाइंग इशूज एज सच. बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉइल्स डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं या क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल. यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जी ना, ये जी सुनते हैं ये गाना. ए दिल

0: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता
0: है। बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं?
1: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है या डिसलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है. ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है. अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज़ नो इंटरप्रेटर. ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना ज़रूरी है. थर्ड इज़ द एक्सेसिबिलिटी. इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज, पॉलिसीज जो है, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा. हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइनअप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे.
0: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे. कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
1: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
0: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं.
1: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक एनजीओ सेटअप में भी काम करती थी मैं. एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड. ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे. एंड आई यूज टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है. ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं. एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
0: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
1: कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
0: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
1: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारे कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच द अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो, ओके, वो हम देते हैं.
0: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
1: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHDNIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
0: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी जिनके घर में जिन बच्चों को जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करे, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
1: श्योर.
0: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
0: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
1: ऑल गुड.
0: तो सुनते हैं ये.
1: ठीक

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी. और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है. जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं. तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें. आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम. दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything. So thanks to them. Thanks to all the listeners कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वजंग संस्था को. थैंक यू सो मच.
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान.

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गर्जंडी, सिंह, भरदा, पलहड़ा, धर्मपुर, गौरा, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनक पुर, टकिया, मेंढारी, भगवानपुर, नवापारा, इकनारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, उदरबसवार, केदमा, जगरना नाथपुर, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैडाण, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के तपकरा और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये महुआडी, कोनपारा, संतपारा, फुटसेरा, टिकलीपारा, खड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये सामरसिंघा, सोहनपुर, बोजिया, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, बेहरामार, गलीमार, लोटान, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और केंद्र में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहाभाठा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों से हम आपको परिचित करा दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:30 से। कार्यक्रम युववाणी में आज चर्चा का विषय रहेगा साइकिल चलाएं, फिट रहें, पैसे बचाएं। विश्व साइकिल दिवस पर सुनिएगा ये विशेष चर्चा, साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से शाम 6:00। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। शाम 7:00, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:00। प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से शाम 6:45 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल हमेशा की तरह शाम 7:20 पर। कार्यक्रम चौपाल में आज आप सुनेंगे इस मास के कृषि कार्य, साथ ही सुनिएगा नसीहत, यूरिया डीएपी संकट में गौ आधारित खेती है टिकाऊ विकल्प। इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से सुनिएगा रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्यम वर्ग कल्याण थीम पर विशेष कार्यक्रम रिले करेंगे आज रात 11:10 पर। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
3: मन का सुकून दिल की आरती
4: सुरीली संदली।
9: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad, यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम।

0: चांद सिद्धवानी और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना ये पॉप गीत।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: राहुल सोलंकी और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये पॉप गीत सुना, और हम आपको याद दिला दें इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पॉप टाइम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

It's apple juice, yo. पॉप गीतों के कार्यक्रम पॉप टाइम में अभी आपने सुना वर्धमान और साथियों की आवाजों में ये गीत, और इसी के साथ ही पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अब समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवावाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रेशा यादव और मैं एक बार फिर हाजिर हूं कार्यक्रम युवाणी लेकर। कार्यक्रम सुन रहे सभी हमारे श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में अभी पेट्रोल डीजल की क्राइसिस से हम सभी परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। दाम बढ़ने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं है बल्कि बाकी चीज़ें भी महंगी होने लगी है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा भी बढ़ जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खर्च कम करने का कोई आसान तरीका क्या हो सकता है। इसका समाधान है साइकिल का उपयोग। दोस्तों, कुछ साल पहले तक लोग छोटी छोटी दूरियों के लिए भी पैदल चलना, साइकिल चलाना पसंद करते थे, लेकिन अब हम में से कई लोग कुछ थोड़े मीटर की दूरी तक जाने के लिए भी मोटरसाइकिल या स्कूटर निकाल लेते हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि पेट्रोल की खपत लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ती है तो उसका सीधा असर हमारे देश और हमारी जेब पर भी पड़ता है। आज के समय में हर कोई अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए मोटरसाइकिल, कार और अन्य वाहनों का उपयोग करते हैं। इन साधनों की वजह से हमारा आना जाना काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई समस्याएं भी बढ़ी हैं। बढ़ता प्रदूषण, पेट्रोल डीजल का खर्च और लोगों की बिगड़ती सेहत आज एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ऐसे समय में साइकिल एक ऐसा साधन है जो न सिर्फ हमारे पैसे बचाता है बल्कि हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों की रक्षा भी करता है। इसे चलाने के लिए किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे शरीर की ऊर्जा से चलती है। ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो ना धुआं निकलता है और ना ही वायु प्रदूषण होता है। आज जब शहरों में प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है तब साइकिल का यूज़ एक बेहतर विकल्प बन सकता है। साइकिल चलाने का सबसे बड़ा लाभ हमारी सेहत को मिलता है। आजकल ज़्यादातर लोग घंटों तक मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इससे शरीर की गतिविधियाँ कम होती जा रही है और मोटापा, मधुमेह व हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। दोस्तों, साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है। इससे शरीर की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं, हृदय स्वस्थ रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। साइकिल चलाना जिनकी डेली रूटीन में होती है वे अक्सर ज़्यादा एक्टिव व चुस्त दुरुस्त होते हैं। जब हम सुबह या शाम खुले वातावरण में साइकिल चलाते हैं तो ताज़ी हवा मिलती है और मन को शांति मिलती है, जिससे तनाव कम होता है और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। कई डॉक्टर भी रोज़ाना कुछ समय साइकिलिंग की सलाह देते हैं क्योंकि ये शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। दोस्तों, आप सभी इस बात से रिलेट करेंगे कि एक वाहन के पीछे बहुत खर्चा करना पड़ता है, चाहे वो पेट्रोल, सर्विसिंग या रखरखाव के खर्चे हों, जबकि हम साइकिल चला के ये खर्चे रोक सकते हैं। हम छोटी दूरी वाले जगहों, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार या आसपास के किसी स्थान तक जाने के लिए साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना कर रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं इन समस्याओं को और भी बढ़ाता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल का यूज़ करें तो प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करेगा। आज जब पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब साइकिल एक ऐसा साधन बनकर सामने आती है जो हमारे खर्च बचाती है, शरीर को स्वस्थ रखती है और देश के बहुमूल्य ईंधन संसाधनों की भी रक्षा करती है। दोस्तों, साइकिल के हमारे जीवन में महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 3 जून को, यानी आज ही के दिन, विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, फिटनेस और टिकाऊ जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, प्रतिवर्ष इस दिवस की थीम होती है। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस 2026 की थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर।
यानी साइकिल का उपयोग करके हम पर्यावरण प्रदूषण कम कर सकते हैं, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और हरित ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। हमें साइकिल चलाने की आदत ज़रूर अपनानी चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, साइकिल चलाएं, फिट रहें, पैसे और पर्यावरण दोनों बचाएं। दोस्तों, आइए आज के क्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आप श्रोताओं के पसंद के गीत, क्योंकि आज का हमारा क्रम है क्रम तरुणों की पसंद। तो आइए सुनते हैं इस क्रम में हमारी पहली प्रस्तुति फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं रानी मलिक और संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत के पसंदकर्ता हैं हमारे श्रोता साथी बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार और लकी सिन्हा।

दोस्तों आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्रम की ओर, जिस क्रम में होता है ज्ञान का भंडार और सभी हमारे श्रोता साथियों को रहता है हमारे इस क्रम का इंतज़ार, जिसमें हम आप सभी श्रोता साथियों तक देश दुनिया और खेल जगत से जुड़े खबर पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रम घटना चक्र की, तो आइए शुरू करते हैं क्रम घटना चक्र।

डेनमार्क में हुए संसदीय चुनावों के बाद मेटे फ्रेड रिक्सन नई मध्य वामपंथी सरकार का नेतृत्व करेंगी। वो तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रेड्रिगेज 4 दिन की यात्रा पर भारत आ रही हैं। इस दौरे में ऊर्जा सुरक्षा, विशेष रूप से कच्चे तेल

की खरीद को लेकर चर्चा पर समझौते हो सकते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम बैठक करेंगी। भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 जून से लागू हुआ। ये सरकार का 5वां मुक्त व्यापार समझौता है। इसके तहत ओमान भारतीय निर्यात के 99% हिस्से को कर मुक्त पहुंच देगा। इससे कपड़ा, स्टील व इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। भारतीय सेना ने जोधपुर में स्वदेशी टैक्टिकल लोइटरिंग म्यूनिशन दिव्य शस्त्र MK-1 का सफल परीक्षण किया। इसे डिफेंस स्टार्टअप होवर्ट ने 95% स्वदेशी उपकरणों के साथ विकसित किया है। ये UAV खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और ये 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वह इसकी विशेषताओं में कम लागत और AI आधारित स्वार्म अटैक क्षमता शामिल है। गृह मंत्रालय ने हाल में देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे असामान्य जनसांख्यिकी बदलावों डेमोग्राफी चेंज का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को दी गई है। 83 वर्षीय जस्टिस नावलेकर अपनी सख्त और बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। वे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त भी रह चुके हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 31 मई को कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्हें नया पद संभालने के बाद साउथ ब्लॉक परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इसके साथ ही वे भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख बने। आइए बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़े खबरों की ओर। फ्रांस के शीर्ष फुटबॉल क्लब पेरी सेंट जर्मेन PSG ने लगातार दूसरी बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीतकर यूरोप में अपना दबदबा कायम किया है। अमरीकी पर्वतारोही टाइलर एंड्रयूज ने दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को महज 9 घंटे 55 मिनट में फतेह कर 23 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कैंसर सर्वाइवर 36 वर्षीय एंड्रयूज ने एवरेस्ट के साउथ बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करके ये रिकॉर्ड बनाया है। उनसे पहले 2003 में नेपाली शेरपा लहाकपा गेलू 10 घंटे 56 मिनट में एवरेस्ट पर चढ़े थे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी ने रविवार को पुरुष युगल फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री की जोड़ी को हराकर अपना पहला सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया। ये उनके करियर का 9वां विश्व टूर खिताब है। भारत की 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक ने प्रिस्टीना में WTT फीडर महिला एकल खिताब जीत लिया। वो ये खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। IPL के स्टार कप्तान रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और मोहम्मद अरशद खान जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को तराशने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर व दिग्गज कोच अमय खुरासिया अब छत्तीसगढ़ सीनियर क्रिकेट टीम के नए हेड कोच नियुक्त किए गए हैं। आज के क्रम घटना चक्र में बस इतना ही। समाप्त होता है क्रम घटना चक्र।

दोस्तों आइए सुनते हैं क्रम तरुणों की पसंद में हमारी अगली प्रस्तुति फिल्म क्योंकि का ये गीत, जिसे गाया है कुणाल गांजावाला ने। गीत के बोल हैं समीर के और धुन है हिमेश रेशमिया के। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

ये गीत उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में, गीतकार हैं आनंद बख्शी और इंदीवर, संगीतकार हैं विजू शाह। इस गीत के पसंदकर्ता हैं हमारे श्रोता साथी दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, संतोष श्रीवास, दिलीप साहू और गेंदू भाई।

दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने गीतों की फरमाइश हम तक भेजते हैं। दोस्तों, हमें इसी तरह पत्र भेजते रहें। हमारा पता है, क्रम तरुणों की पसंद, युवाड़ी प्रभाग द्वारा, केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र, रायगढ़, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 496001। दोस्तों, इसी के साथ ही आप हमें हमारे पते पर ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com। सब्जेक्ट में क्रम तरुणों की पसंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त रिशा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा श्रोता अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री DK शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेन्द्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज के

इस कार्यक्रमों से पहले हम आपको परिचित करा दें, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार शाम 6:10 से। कार्यक्रम फिल्म संगीत हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे शाम 6:20 पर, शाम 7:00, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 10:00। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल शाम 7:20 पर। इसमें आज की बात का विषय रहेगा इस मास के कृषि कार्य, साथ ही सुनिएगा नसीहत, यूरिया डीएपी संकट में गौ आधारित खेती है टिकाऊ विकल्प। इसके अलावा आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से आज रात्रि 8:00 और इसे आप सुनेंगे केवल 5 मिनट तक, 8:05 तक। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर मध्यम वर्ग कल्याण थीम पर विशेष कार्यक्रम हम रिले करेंगे आज रात्रि 11:10 से। गैर फिल्मी गाने हमारे केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 9:00 और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार रात्रि 11:05 पर रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
6: 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के ज-

0: मैं जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही, संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल ह अवैध औ अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। औ प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दू जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली 4 जून के मतगणना होही। कालिच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्य निर्वाचन आयोग ह मतगणना के जम्मो तैयारी लगभग पूरा कर ले है। बता दन कि नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उप निर्वाचन पर 1 जून के मतदान होए रहिस। नगरी निकाय में अध्यक्ष और पार्षद पद पर होए मतदान में 84.58% मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग करें। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पद पर 78.61% मतदान दर्ज करेगिस। राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में राखे गए एक ठिन उच्च स्तरीय बैठका में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद ले प्रदेश के नंदिया और बड़का नरवा में होवत रेती के अवैध उत्खनन ऊपर चर्चा करें। राज्यपाल ह अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन में तुरते रोक लगाए के निर्देश दिन। उमन कहिन कि रेती राज्य के विकास और बुनियादी ढांचा के निर्माण पर एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन ओखर अनियंत्रित दोहन ले पर्यावरण ला गंभीर नुकसान पहुंचत है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली 4 जून के गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमड़ा में राखे गए जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री के प्रवास ल लेके जिला कलेक्टर डॉ. संतोष कुमार देवांगन आज शिविर स्थल के निरीक्षण करके तैयारी के संबंध में जानकारी लेन। एकर पहली मुख्यमंत्री काली कांकेर जिला में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिला में संचालित योजना और विकास काम के समीक्षा करें। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाला ले जुड़े धन शोधन मामला के जांच के तहत आज राज्य के आने आने जगह में तलाशी अभियान चलाईस। एक कार्रवाई भिलई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकाना में करेगीस। तलाशी लिए गए प्रमुख जगह में पूर्व CGPSC सचिव JK ध्रुव के भिलई स्थित निवास शामिल है। CRPF के सुरक्षा घेरा में ईडी अधिकारी मन दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय लेन देन ले जुड़े अभिलेख के जांच करें। ये कार्रवाई बच्चर 2020 ले 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितता के CBI जांच के आधार में करे जाते। ईडी के टीम दुर्ग जिला के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमृत कुमार खलखो के निवास के घलो जांच करीस। अधिकारी मन संपत्ति, बैंक खाता और दूसर वित्तीय अभिलेख ले जुड़े दस्तावेज के परीक्षण करें। इकर अलावा ईडी राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास में घलो दबिस दिस। छत्तीसगढ़ में सड़क ऊपर रहिया लैका मन के पुनर्वास पर जून महीना में विशेष सघन अभियान चलाए जाते। राज्य सरकार के बाल सक्षम नीति के तहत सड़क में रहिया भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा सकेले में लगे लैका मन के पहचान करके उमन के बचाव और पुनर्वास करे जाते। अभियान के तहत लैका मन ला सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते। जिला कलेक्टर मन के अगुवाई में गठित विशेष बचाव टीम डहाले चिन्हित हॉटस्पॉट जगह में अभियान चला के लैका मन ला संरक्षण दे जाते। राज्य सरकार कहे है कि लैका मन के पुनर्वास सरलक प्रक्रिया हरे और ये काम साल भर तक चालू रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के NDA सरकार के 12 बच्छर पूरा होए में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले आज रतिहा 8 बजे ले छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम के प्रसारण करे जाही। ये कार्यक्रम के बेरा 5 मिनट के रही और एक प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र एके शंकर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: आगु बढ़वो बाचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC हा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के लिखित परीक्षा के कार्यक्रम जारी कर दे है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6-9 जून तक राखे जाही। परीक्षा हरेक दिन 2 पाली में होही। पहली पाली बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12 बजे तक और दूसरिया पाली मझनिया 2 बजे ले संझा 5 बजे तक आयोजित करे जाही। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित करे जाही। आयोग बताए है कि प्रवेश पत्र 25 मई के जारी करे जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ले अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत है। आयोग स्पष्ट करे है कि कोनो भी अभ्यर्थी ल अलग से प्रवेश पत्र या SMS नहीं भेजे जाही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है 10वीं और 12वीं के दूसरा अवसर पर मुख्य परीक्षा के समय सारिणी जारी कर दे है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई ले 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई ले 21 जुलाई तक रखे जाही। दोनों परीक्षा बिहनिया 9 बजे ले मझनिया 12:15 बजे तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ ला प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर राष्ट्रीय सम्मान मिली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एला राज्य पर गर्व के बात बताई है। मध्यम उपभोक्ता आधार वाला राज्य मन की श्रेणी में सबले ज्यादा वेंडर पंजीकरण के मामला में छत्तीसगढ़ देश में दूसरा स्थान पाए है, जेखर भर राज्य के चयन PM सूर्य घर एक्सीलेंस अवार्ड खातिर हुए है। मुख्यमंत्री ए उपलब्धि पर ऊर्जा विभाग, क्रेडा और विद्युत वितरण कंपनी के टीम ला बधाई दीन है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना पर आवेदन आमंत्रित करे है। ये प्रमुख राष्ट्रीय पहल के उद्देश्य वैश्विक स्तर में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला, अनुसंधान संस्थान और उद्योग ले भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञ और पेशेवर मल्ला देश भर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र कोती आकर्षित करना है। दुर्ग पुलिस शेयर बाजार में निवेश के नाव में लाखों रुपया के धोखाधड़ी के मामला में एक जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। पुलिस के अनुसार सुपेला रहवासी एक मनखे है, ज्यादा मुनाफा के लालच दे के कई मनखे मल्ला रकम निवेश कराईस और उमल्ले करोड़ों रुपया के ठगी करीस। शिकायत के आधार में पुलिस आरोपी के खिलाफ 2 ठिन आने आने प्रकरण दर्ज करे है। पुलिस आरोपी कराले 1 ठिन कार, लैपटॉप, कंप्यूटर उपकरण, मोबाइल फोन, चेकबुक और लेन देन ले जुड़े दस्तावेज जब्ती करे है। आरोपी ला न्यायिक रिमांड में भेज देंगे है। और पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूर्व गतिविधि शुरू हो गए है। एक हसेती राज्य के कई ठीन जगह में मौसम अचानक बदला थे। यही बीच बीजापुर जिला के पेरमपल्ली गांव में गाज गिरे ले एक माई लोगिन के मौत हो गए। उन्हें दंतेवाड़ा जिला के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में काली गाज गिरे ले 11 मनखे एक चपेट में आ गिन, जेमाले एक महिला के मौत हो गए। इखर अलावा मनेन्द्र कड़करा चरखर गांव में घलो गाज गिरे ले एक महिला के मौत हो गए। उन्हें 5 जिन दूसर मनखे झुलसा गए है। और अब थोरकुन समाचार सार में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त IAS BKS रे के निधन हो गए है। उमन लंबा बेरा ले बीमार रहीन और ओखर उपचार रायपुर एम्स में चलत रहीस। रायपुर नगर निगम है संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाला यूजर चार्ज में बढ़ोतरी करे है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्ति में सालाना 120 रुपया, उन्हें व्यावसायिक संपत्ति में 360 रुपया के बढ़ोतरी करे गए है। और शक्ति जिला के सेंदुरस गांव में पाछुरतिहा एक सियान दंपत्ति के हत्या कर देगीस। पुलिस मामला के जांच शुरू कर दे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घो फेर। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव पर काली मतगणना हो ही संग्रह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम घलो घोषित करे जाही। राज्यपाल है अवैध और अनियंत्रित रेत खनन में तुरते रोक लगाए के दिन निर्देश। और प्रदेश में अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: FM 107 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहले हम आपको सुनवाते हैं डॉन फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज

0: जी अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में डान फिल्म का गीत। गीतकार थे अंजान और संगीतकार थे कल्याण जी आरन जी। कार्यक्रम का अगला गाना कालिया फिल्म से है, जिसे गाया है किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों ने। गीत के बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और इस गीत को स्वरबद्ध किया है आर डी परमन ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, आप सुनिए बुलंदी फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में। मजरूह के बोल हैं और RD बर्मन का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: किशोर कुमार और अनिति की आवाज़ों में अभी आपने सुना सत्ते पे सत्ता फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। कुछ और सदाबहार और सुरीले गाने आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे कार्यक्रम फिल्म संगीत में, रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत में और रात्रि 10 बजे कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार हिंदी में रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से।
1: रायपुर केंद्र है, 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी, कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने CGPSC भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और CGPSC ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजाति विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देशभर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
12: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
1: प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल 4 जून को मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उप निर्वाचन के लिए 1 जून को मतदान हुआ था। नगरीय निकायों में अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए हुए मतदान में 84.58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य सरपंच और पंच पदों के लिए 78.61% मतदान दर्ज किया गया था। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खनिज विभाग के सचिव पी दयानंद से प्रदेश की नदियों और बड़े नालों में हो रहे रेत के अवैध उत्खनन पर चर्चा की। राज्यपाल ने अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत राज्य के विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक अनिवार्य खनिज है, लेकिन इसके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। श्री डेका ने कहा कि राज्य में रेत खनन पूरी तरह से वैज्ञानिक, सुनियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल 4 जून को गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लमना में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में शामिल होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल कांकेर जिले में सुशासन तिहार के तहत कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणाम उन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए। प्रवर्तन निदेशालय के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले की जांच के तहत आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर के लगभग 10 ठिकानों पर की गई। तलाशी लिए गए प्रमुख स्थानों में पूर्व CGPSC सचिव J.K. ध्रुव का भिलाई स्थित निवास शामिल है। ये कार्रवाई वर्ष 2020 से 2022 के बीच आयोजित CGPSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच के आधार पर की जा रही है। ED की टीम ने दुर्ग जिले के तलपुरी स्थित सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अमृत कुमार खलको के निवास पर भी जांच की। अधिकारियों ने संपत्तियों, बैंक खातों और अन्य वित्तीय अभिलेखों से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया। इसके अलावा राजनांदगांव में कृषि विस्तार अधिकारी भूपेंद्र गणवीर के निवास पर भी तलाशी ली गई। वहीं ईडी ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित निवास पर भी दबिश दी। सूत्रों के अनुसार ईडी कथित अपराध से अर्जित धन के स्रोत, उससे जुड़ी संपत्तियों तथा वित्तीय लेनदेन की श्रृंखला का पता लगाने के साथ ही मामले में अन्य संभावित लाभार्थियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में लॉन्च होने के 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत तथा दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा आज रात 8 बजे से छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 5 मिनट की होगी और इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
13: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
1: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSE ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया है कि प्रवेश पत्र 25 मई को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की द्वितीय अवसर के लिए मुख्य परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देशभर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। छत्तीसगढ़ में सड़कों पर जीवन यापन कर रहे बच्चों के पुनर्वास के लिए जून महीने में विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की बाल सक्षम नीति के तहत सड़क पर रहने वाले भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कचरा संग्रहण में लगे बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। रायपुर नगर निगम ने संपत्ति कर के साथ वसूले जाने वाले यूजर चार्ज में बढ़ोतरी की है। नगर निगम के अनुसार आवासीय संपत्तियों पर सालाना 120 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं व्यावसायिक संपत्तियों के लिए यूजर चार्ज में सालाना 360 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये अतिरिक्त राशि संपत्ति कर के साथ ही वसूली जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून पूर्व गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। इस बीच बीजापुर जिले के पेरमपल्ली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार साप्ताहिक बाजार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग इसकी चपेट में आए, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई। इसके अलावा मनेन्द्रगढ़ के पास चरखर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ के पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेवानिवृत्त IAS BKS रे का निधन हो गया है। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और उनका उपचार रायपुर एम्स में चल रहा था। छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आयोजित मंथ ऑफ सोलर अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में क्वींस क्लब ऑफ इंडिया को विश्व स्तरीय हॉस्पिटैलिटी और वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। रायपुर के गुढ़ियारी में स्थित रेलवे अंडरब्रिज मरम्मत कार्य के कारण कल 4 जून से 18 जून तक बंद रहेगा। दुर्ग पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC की लारा परियोजना ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कृत्रिम अंग वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनावों के लिए कल मतगणना होगी। कल ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। ईडी ने सीजीपीएससी भर्ती घोटाले से जुड़े अधिकारियों के विभिन्न स्थानों में तलाशी अभियान चलाया और सीजीपीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहले सुनिए मनोकामना फिल्म का गीत बप्पी लहरी की आवाज में। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

0: आकाशवाणी F90।
1: जय जवाहर। भारत में रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर सप्तम पुरस्कार की ओर से आकाशवाणी रायगढ़ के सभी अधिकारियों, प्रस्तोताओं, तकनीकी टीम और समस्त श्रोताओं को हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का वह स्वर है जिसमें दशकों से समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, संस्कृति और जागरूकता पहुंचाने का विधिक व नैतिक उत्तरदायित्व निभाया है। विशेष रूप से आकाशवाणी रायगढ़ ने स्थानीय कला और क्षेत्रीय समाचारों को जो मंच प्रदान किया है वह बहुत सराहनीय है। विधि और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए रेडियो ने सदैव समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया है। हम कामना करते हैं कि आपके यहाँ भोजन हिताय, भोजन सुखाय का संकल्प भविष्य में इसी तरह अटूट रहे और आपकी आवाज प्रगति के नए आयाम स्थापित करे। एक बार पुनः इस शानदार उपलब्धि पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय

संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना जमाने को दिखाना है इस फिल्म का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार थे आरडी बर्मन।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए, आप सुनिए यशुदास की आवाज़ में चितचोर फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान को तिले राम राम जय जोहार। संगवारी हो, चौपाल के बैठकी में आप मन के स्वागत हवे। अभी के समय और बखत बेराल देखो संगवारी हो तो कभू कभू घाम करत हवे और कभी कभी हवा पानी चलत हवे। तो संगवारी हो, ऐसने मौसम में हमन अपन देह पान के विशेष ध्यान रखना पड़ी। छोटे छोटे लोग लइका मन के सेहत कोती विशेष ध्यान रख। एकरे संगे संग जोन संगवारी मन गाय गरु पालिन हमें, कुकरी चिमरी पालन करिन हमें, वो संगवारी मन ला भी चेताबो कि उमन के सेहत कोती भी विशेष ध्यान रख। का होते कि जैसे अचानक हवा पानी करते, तो अभी समाचार में भी बतात रहीस कि बिजली के कड़क में बहुता मनखे मन उलझ जाते हैं संगवारी हो। तो ऐसने अगर मौसम करत हवे तो हमला सावधानी रखना है, घर ले बाहर नहीं जाना हवे। और दूसर कोती जैसे देखबो तो संगवारी हो, अभी गर्मी भी बढ़त है और ऐसने गर्मी में अपन सेहत ला विशेष ध्यान रख। और मौसम के क्रम कोती भी जाबो तो आज के जो अधिकतम तापमान रहीस एहर रहीस 40 अंश सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड, आर्द्रता बिहनिया 7 बजे रहीस 65%, जोन हर दोपहर 2 बजे घट के 42% होगी। सवे हवा की गति 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार ले उत्तर ले पूरब दिशा कोती बुहात रहीस। आओ ये जानकारी हमला मिलते कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बोईर दादर रायगढ़ के जो कृषि मौसम वैज्ञानिक हमें ओमन के मौसम वैद्यशाला के यंत्र मन के हिसाब ले ये जानकारी हमला प्राप्त होते। और ऐसने अभी के जो मौसम चलत है संगवारी हो, बढ़िया बीच बीच में पानी गिरिस हवे। तो ऐसने में का होते हमर जो खेत है, खेत के गहरी जुताई कर सकत हन। और जैसे खेत खाली होत हवे, बहुता संगवारी मन अभी गर्मी के फसल लगाए रहिन, तो फसल जैसे कटत है और खेत खाली होत हवे तो नमी के फायदा उठाव। और ऐसने भी माने बहुता बीच बीच में पानी बादर करत है संगवारी हो, तो इमें हमर अपन खेत के तैयारी करे में दिक्कत नहीं होत हवे। तो इमें गहरी जुताई करे बर झन भुलाव। का होती कि अगर हमन ऐसने समय में अगर गहरी जुताई करत हवन और बढ़िया धूप पात है, तो इमें जो इल्ली है, प्यूपा है, ये सबो मन गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। और एकरे संगे संग खरपतवार जो है ये बहर भी समाप्त हो जाते। पहले कार ही संगवारी हो, हमन का करन कि ऐसने समय में ऐसने वो में हमन जोन खेत में बहुत ज़्यादा माने खरपतवार होते, जैसे कि दुबी बन है या मोथा है, तो ये मन का होते कि बहुता ज़्यादा गर्मी ऐसने गर्मी में ही ओमन नष्ट होते हैं। तो पहले हमन का करन खेत ला जुताई करके छोड़न और बीच बीच में हमन राफा में उला कांदी मारा, माने कांदी मारे कहन, तो एक घंटा दो घंटा भी अगर ओला उखाड़ दिए जाए तो ये गर्मी में जल के ओहर ओकर जड़ हर ही सूखा जाते। तो अभी के समय में माने वो उतकी मेहनत तो नहीं करत हैं संगवारी हो। तो का हो थे कि जैसे यंत्र ले, जैसे मिट्टी पलट दे थे गहरी जुताई करके अगर छोड़ दे थवन, तो ये में खरपतवार भी नष्ट हो जाए, संगे संग हमार माटी के जो तैयारी है ये हर बढ़िया हो जात हवे। और आज के विषय घलो हवे कि इस मास के कृषि कार्य, जून के जो महीना है ये महीना में हमन खेती बाड़ी में का कर सकत हन, का तैयारी कर सकत हन संगवारी हो, आव जानबो। का होते कि जून के जो महीना है ये हर किसान भाई मन पर बहुत ही महत्वपूर्ण होते, काबर कि ये महीना ले बरसात के शुरुआत होते, खेती के तैयारी, खेती किसानी के बूता काम एकर शुरुआत होते। किसान मन के खेत के तैयारी, बीज के व्यवस्था और योजना के हिसाब ले खेती कैसे करना है, नांगर जुड़ा ट्रैक्टर मन के जो नट बोल्ट हवे एकर रिपेयरिंग करके खेती किसानी के शुरुआत करे जाते। जून के महीना में सबले पहली खेत के जुताई, माटी की तैयारी करे जाते। बरसात शुरू होए के पहले किसान भाई मन खेती ला ट्रैक्टर या हल के मदद ले जुताई करते हैं, एकर ले माटी हर भुरभुरी होते, जेकर ले बीज अंकुरित होए में आसानी होते। खेत में पानी निकासी की व्यवस्था घलो करे जाते,
काबर की अधिक पानी ले

0: फसल खराब झन होए एकर खातिर बर निकासी के व्यवस्था के तैयारी कर सकत हन। ए महीना म जैसे मौसम शुरू होही तो ओकर पहले हमन तैयारी कर सकत हन, बीज के उठाव, बीज के जो प्रमाणीकरण और कैसे योजना बना के हमला खेती करना है। ये महीना में धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, उड़द, मूंग जैसे खरीफ फसल के बुआई करे जाते। एकर बर किसान भाई मन उन्नत किस्म के बीज के उपयोग करते हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके और बढ़िया उत्पादन हो सके। बीज बुआई के पहले बीज के जो उपचार है यह करना जरूरी होते, काबर की कोनो भी फसल ला बुआई के पहले अगर उपचारित कर देते हन तो ओमा रोग व्याधि होए के संभावना कम हो जाते। जैसने प्रकार के हमर जो छोटे छोटे लइका मन होते ओमला रोग व्याधि झन होए एकर खातिर बट टीकाकरण करे जाते। जैसे 2 महीना है, 3 महीना है, 7 महीना में जो टीकाकरण ताकि ओमला कोनो प्रकार के बीमारी झन होए। ऐसने ही फसल मनला बुआई के पहले बीजोपचार कर देले फसल में रोग व्याधि कम हो जाते, फसल के उत्पादन बढ़िया मिलते। जून महीना में खेती में खातू राखड़ के सही उपयोग करना चाहिए। एकर बर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और एकर अलावा हरी खाद के उपयोग कर सकत हन। तो हरी खाद के जो उपयोग है संगवारी हो यह हमर वैज्ञानिक मन के भी सुझाव होवे कि हमला बरसात के पहले अभी हमला एकर बुआई कर देना है और जैसे 25 दिन के फसल, 30 दिन के फसल हो जाते तो ओला खेत में जोताई करके मिला दिए जाते और सनई और ढेंचा के उपयोग ज़्यादा करके करे जाते। बहुता संगवारी मन जैसे मूंग है, उड़द है, एकर भी बुआई कर देते हैं और बढ़िया हरा हरा फसल तैयार होए के बाद ओला जोताई कर देते हैं। तो ए में का होते कि भुइयां के जो उपजाऊपन है, भुइयां के जो उर्वरा शक्ति है यह माने बढ़ोतरी होते। तो ये चीजला बहुता संगवारी मन इला जानत हैं तो एकर भी उपयोग कर सकत हैं। गोबर के खाद जैसे पहले का हो हमन बहुता ऐसने समय में गोबर खाद खेत में पालन तो पहले का रही गाड़ी के बैला गाड़ी में हमन पालन करन। अभी तो माने जौन संगवारी मन खेत में डालत हमें तो ट्रैक्टर के उपयोग करत हमें तो एला भी माने ये समय में कर सकत ह। जून के महीना में पशुपालन के काम हर घलो बाढ़ जाते। पशु मन बर हरा चारा की व्यवस्था करते हैं, पशु के साफ सफाई और टीकाकरण के ध्यान रखे ले पशुधन मन स्वस्थ रही और उत्पादन भी बढ़िया इमें मिलते। वैसे देखा जाए तो जून के महीना हर खेती किसानी के आधार महीना हवे। ये समय मेहनत और सही योजना बना के खेती के बूता काम ला करे ले बढ़िया उपज प्राप्त हो सकत है, जेकर ले किसान भाई मन के आर्थिक स्थिति मजबूत होही और किसान देश के अन्नदाता हवें। तो ये बूता कामला हमला सही ढंग ले करना हवे और का होते संगवारी हो कुछ भी जिले हमन योजना के माध्यम ले अगर करथन तो हमर बूता काम भी बढ़िया होते और में हमला बढ़िया लाभ मिलते। तो संगवारी हो आप मन भी खेती के जो बूता हवे ये महीना के जो बूता है एला बढ़िया योजना ढंग ले करो, योजना बना के करो और सही ढंग ले करिह तो संगवारी हो हमर फसल के पैदावार बढ़िया मिलही और खेती में हमन बढ़िया आमदनी पा सकत हन। बखत बरा के हिसाब से संगवारी हो हमर कृषक प्रश्न मंच के बारी आइस हवे। तो संगवारी हो कापी पेन लेव और आज के कृषक प्रश्न मंच के प्रश्न लिख। संगवारी हो आज के प्रश्न हवे 2 ठिन कद्दूवर्गीय फसल के नाम बताहा और कार्यक्रम में जुड़े रही संगवारी हो ये विषय में चर्चा भी करबो। तो ये तो रही हमर कृषक प्रश्न मंच और आप मन एकर सही उत्तर भेज सकत ह, चिट्ठी के माध्यम ले भी आप मन भेज सकत ह, ईमेल के माध्यम ले भी एकर उत्तर भेज के आप मन भेज सकत ह। तो संगवारी हो ये तो रही आज के कृषक प्रश्न मंच। अब बखत बेरा हो चली से आज के किसान कोती जाए के। तो आज के किसान हमें ग्राम साल्हेवना विकासखंड रायगढ़ के कृषक बलराम साहू ले परवल के उन्नत खेती एमन करीन हमें और मोर बातचीत हुई से। तो चली सुनी संगवारी हो आज के किसान।
1: संगवारी हो, मैं हव आप मन के गोटकार संगवारी सुशील प्रधान सब्बो झन ला कहत हव राम राम जय जोहार। संगी हो, हमर दैनिक जीवन में सब्जी वर्गीय फसल मन के अब्बड़ महत्व रथे। रोजमर्रा के जीवन में अगर हमन हरा हरा साग पान के उपयोग करन तो हमन तो स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, संगे संग हमर जो लोग लैका मन हमें एवन भी ठिन्ना रथें और तंदुरुस्त रथें और हमर आकाशवाणी के भी सार्थक प्रयास की प्रगतिशील किसान और ग्रामीण विकास। तो एक क्रम में हमन ऐसने संगवारी मन ठी चर्चा करथन जन मन की बढ़िया वैज्ञानिक तौर तरीका ले कोई भी खेती ला करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो आज हमर बीच ऐसने जुनट्ठा किसान उपस्थित हवें जन मन की परवल के उन्नत खेती बहुत अच्छा ढंग ले करी हमें और बढ़िया लाभ कमात हमें। तो संगवारी हो, आवा जानबो उमन के विचार ला। तो सबसे पहले किसान भैया आप
2: जो हाँ। जय जोहार।
1: हाँ तो किसान संगवारी आप मन के नाम ला बताहा, आप मन के गांव के नाम बताहा।
2: मोर नाम बलराम साहू, ग्राम साले होना।
1: हाँ तो जैसे आप मन के प्रक्षेत्र ला देखे ले ऐसे लगत हवे कि बहुत लंबा समय ले परवल के खेती करत हा, तो कतक साल ले एकर खेती करत हा आप मन?
2: मैं तो 5 साल ले खेती करत हा।
1: तो काफी अनुभव भी है कह, 5 साल ले एकर खेती करा था। तो एकर जैसे शुरुआती दौर में देखन तो एला कैसे कैसे करे वाला थे?
2: पहले तो खेत ले जोते ही करते हैं, ओकर बाद में रफा में फाड़ा में पूरा गार बना के गड्ढा खोदता और कांदा ला लेके उमे गड़िया था खाद डाल के। ओकर बाद में और पानी डाल, पानी दे के बाद में थोड़े थोड़े उगते, ओकर बाद में रोई गड़िया था।
1: अच्छा, नारला चढ़ाया?
2: नारला चढ़ाया।
1: हाँ हाँ। तो एकर जैसे एक बार जैसे काना के उपयोग करें कहा तो के साल ले हर नहीं लगे हो?
2: यार 3 साल तक नहीं लगे।
1: अच्छा, मतलब 1 साल जैसे काना लान के लगाएं और बढ़िया अगर चढ़ाएं तो माने 3 साल तक?
2: 3 साल तक कुछ नहीं लगे।
1: कुछ नहीं लगे तो शुरू साल में माने आर्थिक लागत थोड़ी लगत रही कहो?
2: वो मास रोई केवल थोड़े आर्थिक लागत लगते, ओकर बाद में तो दूसरे साल में और नहीं लगे कुछ और।
1: हाँ हाँ हाँ। तो किसान ला माने बढ़िया लाभ के फसल है कहो?
2: हाँ यार पूरा लाभ के 9-6 महीना के फसल है, पूरा लाभ लाभ होते हैं।
1: हाँ, और खास बात यह है कि जैसे एक बार जैसे फाउंडेशन बना दें शुरू साल में जैसे चढ़ाए बर जैसे बांस के या बल्ली के उपयोग करें तो दूसरा साल तीसरा साल माने
2: उपयोग हो जाए नहीं लगे
1: तो किसान ला माने आर्थिक लागत जो है ओहर कम लगी। तो अगला जो 2 साल है वो में माने पूरा भरपूर माने
2: भरपूर फायदा होगी,
1: फायदा होगी किसान ला। तो कतका अच्छा बात है कि आप मन इतकी अच्छा फसल के चुनाव करे हो, तो ये में बढ़िया लाभ मिलते हैं आप मन ला?
2: हाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ। तो बीच बीच में जैसे कोई प्रबंधन जैसे के बात करें तो और का करे लगते हैं?
2: हमें जैसे एक हफ्ता में कम से कम खाद 15 दिन में एक बार खाद दे लगते, हफ्ता भर में दवाई छिड़काव करे लगते वैज्ञानिक मन के सलाह लेके।
1: हाँ तो जैसे आजकल तो सुविधा भी है, साधन भी है, फोन के माध्यम ले भी हमन वैज्ञानिक मन से संपर्क कर सकत हन, तो एकर उपयोग करते आप मन?
2: हाँ ओकर भी उपयोग करते हैं वैज्ञानिक मन पूछ के।
1: हाँ तो जैसे दवाई माटी के तहाँ उपयोग करे माने ओकर समस्या के समाधान भी होते?
2: हो, समाधान हो जाते हैं।
1: तो
2: ज्यादा करके दही में हरा कीड़ा के और सफेद मक्खी के प्रकोप रहते।
1: हाँ हाँ हाँ। किसान का खुद एक वैज्ञानिक के कहो माने उस क्षेत्र में जैसे लंबा अवधि तक कुछ भी करत जाते तो बहुत अनुभव रहते किसान ला। तो जैसे 5 साल होगी, 6 साल होगी ना एकर, तो आप मतलब ये चीज के अनुभव है कि कौन समय में माने का दवाई के छिड़काव करना है? हाँ। माने का आवश्यकता पड़त है तो वही हिसाब से एकर करत है तो बढ़िया माने इमें माने लाभ मिलत है कहो?
2: हाँ पूरा बढ़िया भरपूर लाभ मिलते है।
1: तो एकर बिक्री उक्री कैसे करते आप मन?
2: बिक्री हमन मंडी ले जाते
1: हैं। हाँ हाँ।
2: सब्जी मंडी।
1: हाँ। माने थोक दे दो कहो?
2: हाँ। और गांव में भी आते हैं, गांव में तो उत्तर निदान हम सब्जी मंडी ले जाते
1: हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे ज्यादा मात्रा में निकलत है तो एक मुश्त तो बेचना भी
2: फायदा
1: है, फायदा है कहो? तो तुरंत देखे माने वहाँ बढ़िया रेट भी मिलते?
2: हाँ बढ़िया रेट मिलते।
1: हाँ तो किसान भैया इतनी बढ़िया आप मन परवल के उन्नत खेती करे हो और लाभ कमात हो, तो आप मन के विचार ला हमन कार्यक्रम के माध्यम से और श्रोता संगवारी मन तक साझा करबो। तो जोन किसान संगवारी मन आप मन के जैसे युवा साथी मन जोन मन खेती बाड़ी ले जुड़ी हमें और जोन मन श्रोताएं वो मन सुनत रही तो वो संगवारी मन ला आप मन का संदेश देना चाहिए?
2: सब्जी सब्जी की खेती करना चाहिए, इसमें सब्जी खेती में फायदा है और ज्यादा से ज्यादा फायदा है कहते हैं।
1: किसान भैया कतका बढ़िया सारगर्भित संदेश दे है, तो निश्चित रूप से आप मन के संदेश सुन के हमारे श्रोता संगवारी मन किसान संगवारी मन भी लाभान्वित हुई, अतक बढ़िया जानकारी देव एक खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद और आप मन ला राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
0: हाँ तो संगवारी हो, अभी सुनत रहें आज के किसान इमन रहीन साल्हे ओना विकास खंड रायगढ़ के कृषक रहीन बलराम साहू और कतका बढ़िया इमन परवल के खेती करीन हमें और लाभ लेते हैं। और सही देखा जाए संगवारी हो तो सब्जी वर्गीय जो फसल हवे एहर माने 12 महीना इमें फायदा मिल सकत है और बहुता संगवारी मन एकर लाभ भी लेते हैं। और ये जो फसल मन है इमन नगदी फसल है लंबा समय तक किसान मन एकर लाभ लेते हैं। और परवल के खेती हर जैसे किसान भैया बताइन कि एक साल जैसे हमन काना ला लगात हवन तो शुरू साल थोड़े कुन आर्थिक लागत लगत हवे, लेकिन तीन साल तक ओमें हमन बढ़िया लाभ ले सकत हन। तो संगवारी हो, आप मन भी एकर खेती कर सकत हो, बढ़िया लाभ कमा सकत हो। आज के नसीहत में विषय हवे यूरिया डीएपी संकट में गौ आधारित खेती है टिकाऊ विकल्प। संगवारी हो, अभी के वर्तमान समय में खेती किसानी में रासायनिक खातू जैसे कि यूरिया है, डीएपी है, एकर उपयोग हर बहुत ही बाढ़ गए हवे। किसान भाई मन फसल के ज़्यादा उत्पादन ले बर यूरिया और डीएपी के अंधाधुन छिड़काव करत हवें। कभू कभू यूरिया और डीएपी के कमी या संकट खड़े हो जाते, एकल ले किसान भाई मन परेशान हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में गौ आधारित खेती हर एक ठीन टिकाऊ और लाभदायक विकल्प के रूप में सामने आत हवे। का होते कि हमन उत्पादन बढ़ाए खातिर बर अंधाधुन जो रासायनिक खाद के जो छिड़काव करे हन तो उत्पादन तो मिल गिस, लेकिन संगवारी हो दूसर कोती हमर जो दुष्परिणाम भी देखे बर मिलिस। बहुता माने भुइया हर कड़ा होत गिन और जो पर्यावरण है एमे भी एकर असर पड़िस। आओ आनी बानी के जो रोग व्याधि अभी देखे बर मिलत हवे जैसे बीपी है, शुगर है, हर मनखेला प्रायः देखत हवन। तो ये हर वही एकरे ही तो परिणाम है संगवारी हो कि हमन अंधाधुन जो रासायनिक खाद के छिड़काव करे हवन तो एकर ले दुष्परिणाम भी दिखत हवे। तो अविया समय में हमला का करना पड़ी संगवारी हो, हमला जैविक खेती करना पड़ी। अगर नहीं करबो तो आने वाला पीढ़ी ला हमर एकर और ज़्यादा दुष्परिणाम देखे बर मिलही। तो एकर खातिर बर समय रहते हमला गौ आधारित खेती हमला अपनाना हवे। और गौ आधारित खेती में गाय के गोबर और गौमूत्र के उपयोग करके जैविक खेती करे जाते। ये पद्धति में जीवामृत है, घन जीवामृत है, पंचगव्य और कंपोस्ट खाद बना के खेत में डाले जाते। एकर उपयोग ले माटी के जो उर्वरता है एहर बाढ़ी और फसल हर स्वस्थ रही। रासायनिक खाद के तुलना में ये तरीका हर सस्ता होते। और खास बात ये हवे कि ये हर पर्यावरण अनुकूल खेती हवे। तो हमन ला का करना है, हमला ये खेती ला अपनाना है, पर्यावरण भी अनुकूल रही और संगे संग भुइया के उपजाऊपन हर भी लंबा समय तक बरकरार रही। पहले संगवारी हो, हमन जब छोटे छोटे रहें तो भुइया में केंचुआ है, मेंढक है, ये चीज़ मन ला हमला बहुता देखे बर मिले। लेकिन ये जो रासायनिक खातु के जो छिड़काव करत गेन तो हमर जो मित्र कीटमन है ये मन धीरे धीरे नष्ट होत गिन और आजकल ज़्यादा देखे बर नहीं मिले। यूरिया डीएपी के लगातार उपयोग ले भुइया के जो उपजाऊपन है ये हर धीरे धीरे कम हो जात हवे। माटी हर कठोर हो जात है, ऐसे में फसल में रोग व्याधि बाढ़े के संभावना बाढ़ जाते। एकर खातिर गौ आधारित खेती हर जैविक तत्व के उपयोग होए ले भुइया में केंचुआ और लाभकारी जीवाणु मन बाढ़ जाते हैं। एकर ले भुइया के जो गुणवत्ता है इमें सुधार हो ही और टिकाऊ खेती हर लंबा समय तक बरकरार बने रही। गौ आधारित खेती हर किसान मन बर आर्थिक रूप ले घलो फायदेमंद हवे। घर में पाले गाय के गोबर और गौमूत्र के उपयोग करके खाद बना सकत हन। एकर ले बाजार ले महंगा रासायनिक खातु खरीदे के जरूरत नहीं पड़े। एकर ले किसान के आर्थिक स्थिति में सुधार हो ही। धीरे धीरे जम्मो कोती जैविक खेती करही तो मनखे के स्वास्थ्य में घलो सुधार हो सकत है। काबर कि जैविक फसल में रसायन कम देते हैं और इमें रासायनिक कम लागते। आजकल सरकार कोती ले घलो जैविक और प्राकृतिक खेती ला बढ़ावा दे बर प्रयास करे जात हवे। कई ठिन योजना के माध्यम ले किसान मन ला प्रशिक्षण और सहायता दिए जात हवे। एकर बर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में संपर्क करे जा सकत है और एकर लाभ ले सकत हैं। गौ आधारित खेती ले पर्यावरण संरक्षण घलो होते, काबर कि इमें पानी और माटी के जो प्रदूषण है एहर कम होते। ये खेती ले माटी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य घलो सुरक्षित हो सकत है। तो संगवारी हो आप मन भी ये खेती ला बढ़ावा देव और जैविक खेती कर, एकर ले का होही पर्यावरण भी बढ़िया रही, संगे संग हमर जो उत्पाद है ये उत्पाद में मिठास रही, हमर स्वास्थ्य पर बढ़िया फायदेमंद हो सकत है। तो संगवारी हो ये तो रही आज के नसीहत के गोट। अब बखत बेरा हो चली से संगवारी हो बढ़िया गुरतुरहा लोकगीत सुने के, तो चली सुनबो बढ़िया लोकगीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हाँ तो संगवारी हो, अभी सुनत रहें संदेश। अब संदेश के पहले सुनत रहें लोकगीत। इसमें स्वर दे रही लता खापड़े और नारायण गिरी। और आज के टीप के विषय हवे कद्दूवर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। संगवारी हो, कद्दूवर्गीय फसल जैसे कि लौकी है, करेला है, मखना है, खीरा, तरबूज, खरबूज और तरोई किसान मन पर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी फसल हवे। ये फसल ले बढ़िया आमदनी मिलते, लेकिन कीट और रोग के हमला ले उत्पादन में भारी नुकसान हो सकत है। एकर खातिर सही समय में कीट और रोग प्रबंधन करना बहुत जरूरी हवे। कद्दूवर्गीय फसल मन में फल मक्खी हर एक ठीन मुख्य कीट है। ये कीट हर फल में अंडा देते, जेकर ले फल हर सड़ जाते और उपयोग लायक नहीं रहे। एकर बचाव बर खेत ला साफ सुथरा रखना, खरपतवार ले धुरिया करना और खराब फसल ला तोड़ के नष्ट कर देना चाहिए। फेरोमेन ट्रैप के उपयोग ले फल मक्खी ला नियंत्रित करे जा सकत है। ओकर बाद लाल कद्दू मृग घलो फसल बर हानिकारक कीट हवे। इहर पत्ती ला खा के फसल ला नुकसान पहुँचाते। एकर नियंत्रण बर राख या नीम आधारित जैविक दवाई के छिड़काव लाभकारी होते। एकर अलावा जरूरत पड़े ले कृषि विशेषज्ञ के सलाह ले कीटनाशक दवाई के घलो उपयोग करे जा सकत है। कद्दूवर्गीय फसल मन बर चूर्णी फफूंद रोग सामान्य रूप ले देखे जाते। ये रोग में पत्ती के ऊपर सफ़ेद चूर्ण जिसे परत दिखते, एकले पौधा कमजोर हो ही और उत्पादन में घटोतरी होते। एकर नियंत्रण बर समय समय में सल्फर या अनुशंसित दवाई के छिड़काव कर सकथन। मोजेक रोग हर घलो एक ठीन गंभीर समस्या हवे। ई रोग हर वायरस खातिर होते और पत्ती में पीला हरा धब्बा दिखते। ई रोग हर मुख्य रूप ले माहू कीट डहार ले फैलते। संक्रमित पौधा ला उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। माहू कीट के नियंत्रण बर नीम तेल या जैविक दवाई के छिड़काव कर सकत हन। फसल प्रबंधन में उन्नत और रोगरोधी बीज के उपयोग करना बहुत जरूरी हवे। बीज बुआई के पहले बीजोपचार करना, खेत में संतुलित खाद और उर्वरक के उपयोग करना जरूरी होते। ऐसे अगर करत हन तो पौधा हर मजबूत रही। फसल में सही समय में निंदाई गुड़ाई और सिंचाई के सही व्यवस्था करना घलो जरूरी होते। सही जानकारी और समय में उपाय अपना के किसान भाई मन फसल के नुकसान ला कम कर सकत हैं और बढ़िया ये फसल मन में लाभ प्राप्त कर सकत हैं। एकरे संगे संग विषय हवे साइकिल चलाएं, पर्यावरण बचाएं, सेहत बनाएं, विश्व साइकिल दिवस। संगवारी हो, हर एक बच्चर 3 जून यानी कि आज के दिन ला विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाते, जेकर मुख्य उद्देश्य साइकिल के महत्व और उपयोगिता ला जन जन तक पहुँचाना हवे। साइकिल हर एक ठिन सरल, सस्ता और पर्यावरण हितैषी यातायात के साधन हवे। एकर उपयोग ले ना केवल पर्यावरण हर सुरक्षित रहते, बल्कि एकर उपयोग ले मनखे के सेहत हर घलो बने रहते। आज के समय में मोटर गाड़ी मन के संख्या हर तेजी ले बढ़त हवे, लेकिन ई गाड़ी मन ले निकलते धुआं हवा ला प्रदूषित करते। हवा प्रदूषण के खातिर कई प्रकार के बीमारी होते। अगर हमन अपन रोजमर्रा के दिनचर्या के छोटे छोटे काम मन ला साइकिल के उपयोग ले करबो तो प्रदूषण कम होही और पर्यावरण हर घलो सुरक्षित रही। साइकिल चलाए ले पेट्रोल और डीजल के खपत घलो कम होही, जेकर ले प्राकृतिक संसाधन के घलो बचत करे जा सकत है। साइकिल चलाए ले शारीरिक व्यायाम होते, एकल ले हृदय मजबूत रहते, शरीर के मांसपेशी सक्रिय रहते और मोटापा घलो कम होते। नियमित साइकिल के उपयोग ले मधुमेह, रक्त उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसे बीमारी के खतरा कम होते। आज के भागम भाग भरे जीवन में साइकिल चलाना एक ठीन बढ़िया व्यायाम के साधन बन गए हवे। साइकिल हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर बहुत ही बढ़िया उपयोगी साधन हवे। एकर रख रखाव में बहुत कम खर्चा लागते। विद्यार्थी मल्ला स्कूल जाए बर, किसान मल्ला अपन खेत तक पहुँचाए बर और मजदूर भाई मल्ला अपन काम के जगह तक जाए बर साइकिल के उपयोग करते। एकर ले समय और धन दोनों की बचत होते। सरकार हर घलो साइकिल के उपयोग ला बढ़ावा देवत है। कई जगह साइकिल के ट्रैक बनाए जात हवे और जागरूकता अभियान चला के साइकिल के महत्व के बारे में लोगन मन ला समझाए जा सकत है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर में रैली प्रतियोगिता और जन जागरण कार्यक्रम आयोजित करे जात है, जेकर ले अधिक लोगन मन साइकिल के उपयोग ले प्रेरित हो सकें। साइकिल हर पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन के आधार हवे। हमन सबोला अधिक ले अधिक साइकिल के उपयोग करना चाहिए। साइकिल चला के हमन न केवल अपन सेहत ला बेहतर बना सकत हन, बल्कि स्वच्छ और पर्यावरण के निर्माण में घलो योगदान दे सकत हन। तो संगवारी हो तो रही चर्चा के विषय। अब बखत बेरा हो चली से बढ़िया गुरतुरहा लोकगीत सुने के, तो चली सुनी लोकगीत।

0: हाँ तो संगवारी हो, अभी सुनत रहें लोकगीत, एकर इला स्वर दे रहीन श्रवण कुमार साहू। आओ बखत बेरा हो चली से संगवारी हो, मोदी सरकार के 12 बच्छर पूर्ण होए में छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम एकर प्रसारण होही रायपुर केंद्र ले, तो चली सुनी संगवारी हो ये कार्यक्रम।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, 8 बजे हैं। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम, लीजिए अब सुनिए, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश की है।

0: जय जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम के संग मैं स्मिता शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार हा पाछू 26 मई के 12 बच्छर पूरा करीस। 26 मई 2014 के नरेंद्र मोदी हा प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रहीन। प्रधानमंत्री बने के बाद 12 बच्छर के दौरान श्री मोदी हा देश के हित में कतकुन बड़े फैसला करीन हे। एमा जम्मू कश्मीर ले अनुच्छेद 370 ला खत्म करना, वस्तु और सेवा कर GST, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, अग्निपथ योजना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून, नवा शिक्षा नीति संग्रह कतकुन फैसला शामिल है। उन्हें श्री मोदी के कार्यकाल में कतकुन जन कल्याणकारी योजना घलो लागू करेगी है। एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में भारतीय जनता पार्टी डहर ले छत्तीसगढ़ संग्रह देशभर में 5 ले 21 जून तक 12 साल विश्वास विकास और जन कल्याण के थीम में अभियान चलाया जाही। ये अभियान के उद्देश्य मोदी सरकार के 12 बच्छर के बड़े उपलब्धि, जन कल्याणकारी योजना और विकास के कामला लोगन तक पहुँचाना है। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ता मन हा लोगन के घर में जाके उखर मन ले गोठ बात करके सरकार के योजना के जानकारी दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा केंद्र में एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला बधाई दीन हैं। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी के दूरदर्शी निर्णायक और जन केंद्रित अगुवाई मा भारत हा सेवा सुरक्षा आत्मविश्वास और विकास के नवा युग मा प्रवेश करे है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स मा पोस्ट कर श्री सायहा कहिन कि पाछू 12 बच्छर मा श्री मोदी हा सेवा सुशासन और अंत्योदय के भावनाला केंद्र मा राखिन और निश्चित करिन कि विकास के फायदा समाज के आखिरी मनखे तक पहुँचाए। उमन कहिन कि गरीब किसान माइलोगिन युवा वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए के जौन संकल्प प्रधानमंत्री हा ले रहिन वह आज देश में दिखत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में श्री मोदी के नेतृत्व विशेष रूप ले प्रेरणादायी रहे है। कई बच्छर तक नक्सल हिंसा ले प्रभावित बस्तर और वनांचल क्षेत्र में आज विकास विश्वास और जन कल्याण के नवा धारा दिखत है। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा मोबाइल कनेक्टिविटी बैंकिंग सुविधा और शासकीय योजना के पहुंच दूरस्थ जनजातीय अंचल तक निश्चित हुए है, जेखर ले लोगन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए है। श्री साय कहिन कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, जन धन योजना और डिजिटल इंडिया योजना जैसन योजना ले गरीब किसान मातृशक्ति युवा और जनजातीय समाज के जीवन में आत्मविश्वास के संचार हुए है। उमन कहिन कि योजना के फायदा आखिरी मनखे तक पहुँचाए के प्रधानमंत्री के सोचा शासन ला ज्यादा संवेदनशील और जिम्मेदार बनाए है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि श्री मोदी हा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र ला सिर्फ नारा भर नहीं रहन दिन फिर ओला व्यवहार और नीति के आधार बनाइन। मुख्यमंत्री हा कहिन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व हा देश ला सिर्फ आर्थिक रूप ले मजबूत नहीं बनावत है फिर सांस्कृतिक आत्मगौरव राष्ट्रीय एकता और जन भागीदारी की भावना ला घलो नवा ऊर्जा देवत है। मुख्यमंत्री हा कहिन कि छत्तीसगढ़ सरकार हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जन कल्याण सुशासन और अंत्योदय के संकल्प ला आगू बढ़ाए बर प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ये निश्चित करत है कि केंद्र सरकार की योजना के फायदा प्रदेश के आखिरी मनखे तक पहुँचाए और विकास के फायदा समाज के हर वर्ग ला मिलाए। श्री साया कहिन कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के अगुवाई में भारत विकसित राष्ट्र बने के संकल्प ला नवा ऊंचाई तक पहुंचा ही। ता अभी आप मन सुनत रहे हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में केंद्र के एनडीए सरकार के 12 बच्छर पूरा होए के मौका में प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम। एकरे संग स्मिता शर्मा के जय जोहार।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर की थी।
2: हाँ तो संगवारी हो अभी सुनत रहें मोदी सरकार के 12 बच्छर पूर्ण होए के छत्तीसगढ़ी में विशेष कार्यक्रम और एकर प्रसारण होत रहिस रायपुर केन्द्र ले। अब वापस लौटबो चौपाल के शेष भाग कोती और विषय हवे परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण हम सब की जिम्मेदारी। संगवारी हो, जल है तो कल है, जल ही जीवन के मुख्य आधार हवे। पानी के बिना मनखे पशु पक्षी जीव जंतु और पेड़ पौधा के जीवन घलो संभव नहीं होवे। हमर पुरखा मन अपन जरूरत ला पूरा करे बर गांव गांव में तालाब कुआं बावली डबरी जैसे परंपरागत जल स्रोत मन ला बनाए रहिन। ये जल स्रोत मन केवल पानी की व्यवस्था नहीं करें बल्कि इमन पर्यावरण संरक्षण और भू जल स्तर ला घलो बनाए रखत रहिन। आज के वर्तमान समय में ई परंपरागत जल स्रोत में उपेक्षा और प्रदूषण के खातिर धीरे धीरे समापन कोती जात हवे। एकर संरक्षण करना बड़ जरूरी हवे। पहले के समय में गांव के तालाब नरवा और कुआं मन के पानी के प्रमुख साधन रहिस। खेती किसानी पशुपालन और घरेलू काम बर यही जल स्रोत मन उपयोग में आवत रहिन। बरसात के पानी ई जल स्रोत मन में संचित होके भू जल स्तर ला बढ़ावत रहिस। लेकिन आधुनिकता और बढ़त जनसंख्या खातिर कई ठिन जल स्रोत मन ला पाट दिए गिस, अतिक्रमण होइस और गंदगी ले भर गए हवे। एकर परिणाम स्वरूप पानी के संकट हर दिनों दिन बढ़त जात है। परंपरागत जल स्रोत के संरक्षण बर जन जागरूकता बहुत जरूरी हवे। गांव और शहर के लोगन मन ला ई जल स्रोत मन के महत्व ला समझाना चाहिए। तालाब कुआं और डबरी के नियमित सफाई करना, अतिक्रमण हटाना और गंदगी फेंकना बंद करना बहुत ही आवश्यक हवे। पहले कार्य ही संगवारी हो, मैं जब चौथी या पांचवी पढ़त रहे तो मुला आज भी याद हवे, हमर गांव के जो जल के मुख्य स्रोत रहिस नरवा और तरिया। नरवा के पानी पिए में उपयोग होए और तालाब के उपयोग करत रहिन। लेकिन धीरे धीरे का होइस बोरिंग होइस, ओकर बाद बोर होइस और अतकी ज़्यादा बोर की खुदाई होइस कि आज के स्थिति में बोर में भी पानी देना बंद होत हवे। तो अगर समय रहते हमन ये जो परंपरागत जल स्रोत है ये मतलब अगर संरक्षण नहीं करबो तो अवैया जो समय है और ज़्यादा जल संकट के समस्या देखना पड़ सकत है। पहले तरिया नरवा के पानी ला पिए में उपयोग करत रहें, धीरे धीरे का होइस बोर बोरिंग होइस और अतकी ज़्यादा होइस कि अब स्थिति ऐसने बनत हवे कि बोर में भी पानी निकलना कम हो जात है। तो अतकी स्थिति खराब होत हवे। तो ऐसने अगर स्थिति बने रही संगवारी हो तो अवैया जो पीढ़ी हवे ए मन बर जल संकट के जो भयावह रूप है ओला देखना पड़ सकत है। एकर सेती संगवारी हो समय रहते हमला जागरूक होना पड़ी, परंपरागत जल स्रोत मन के संरक्षण करना होई। और आज देखत हन कि घर द्वार और अंगना कोला बाड़ी जम्मो कोती हमन का करत हन सीमेंटेड कर देत हवन। एकर ले बरसात के जो जल है यह धरती ला कैसे जाही। पहले का रहिस जम्मो कोती माटी रहिस, बरसात के पानी गिरे और वह धीरे करके माने जमीन में ही ओकर पानी हर जात रहिस। तो एकल ले काहे धरती हर फिर सोके और जल स्तर हर बढ़िया बरकरार बने रहे। तो संगवारी हो हमला ये चीज़ ला संरक्षण करना अब्बड़ जरूरी हवे ताकि अवैया पीढ़ी ला हमन बढ़िया जल संकट ले बचा सकन। तो संगवारी हो चर्चा तो चलत रही लेकिन सुनबो बढ़िया गुरतुरहा लोकगीत फिर चर्चा ला आगे बढ़ाबो।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी हो, सुनत रहें संदेश, और संदेश के पहले सुनत रहें लोकगीत, एला स्वर दे रहीन श्रवण कुमार साहू के, और विषय हवे संगवारी हो एनीमिया को हल्के में ना लें। संगवारी हो एनीमिया हर एक ठीन गंभीर स्वास्थ्य समस्या हवे, जेन ला कि सामान्य भाषा में खून की कमी कहे जाते। जब शरीर में हीमोग्लोबिन के मात्रा सामान्य स्तर ले कम हो जाते तो एनीमिया की स्थिति बनते। हीमोग्लोबिन खून के लाल कण में पाए जाते और शरीर के हरेक भाग में ऑक्सीजन पहुँचाए के काम करते। एनीमिया ला हल्का में नहीं लेना चाहिए, काबर कि धीरे धीरे शरीर ला कमजोर एहर बना देते। आजकल महिला, किशोरी, गर्भवती महिला और छोटे छोटे लड़का मन एनीमिया के समस्या ज़्यादातर देखे बर मिलत हवे। शरीर में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी के कमी, कुपोषण, अधिक रक्तस्राव और कुछ बीमारी मन एनीमिया के प्रमुख कारण हवें। एनीमिया होले मनखे ला जल्दी थकान लागथे, कमजोरी महसूस होते, चक्कर आते और सांस फूलते, चेहरा पीला दिखते और काम करे के मन नहीं लागे। गर्भवती महिला मन एनीमिया एनीमिया हर बहुत ही खतरनाक होते। एकले माँ और गर्भ में पलत शिशु दोनों के स्वास्थ्य असर पड़ते। समय में इलाज नहीं कराएले प्रसव के समय जटिलता बढ़ जाती। एकरे संगे संग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी विषय रही संगवारी हो, तो एकर भारत सरकार के एक थीन महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना हवे, जेकर शुरुआत 9 मई 2015 में हो रही। और ये योजना के मुख्य उद्देश्य गरीब, मजदूर, किसान और कम आय वाला परिवार मतलब दुर्घटना के समय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना हवे। आज के वर्तमान समय में दुर्घटना कब हो जाही एकर कोई भरोसा नहीं हवे। एकर बर सड़क दुर्घटना, काम काज के दौरान चोट लगना और कोनो आकस्मिक घटना खातिर परिवार के आर्थिक संकट में पड़ सकत है। यही बात ला ध्यान में रख के प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के शुरू होइस हवे। तो संगवारी हो एकरे संगे संग जाए के बखत बेरा भी पहावत है, तो अपन संगवारी ला देव विदा। जात जात जम्मो संगवारी मल्ला आप मन के मयारू संगी सुशील प्रधान को तिले राम राम, जय जोहार।

किसान भाई अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे। किसान माफ कीजिएगा चौपाल, इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। पहले सुनिए गुरु रंधावा की आवाज में ये गीत।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कुमार सानू और आस्था गिल की आवाज़ में अभी आपने ये गैर फिल्मी गाना सुना और इसके साथ ही कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहले सुनिए सड़क फिल्म का गीत। समीर का लिखा हुआ और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ।

0: अनुराधा पौड़वाल और साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना सड़क फिल्म का गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।
1: आकाशवाणी F90।
2: जय जोहार दोस्तों, मैं महेश महिलाने रायगढ़ छत्तीसगढ़ का निवासी हूं और मैं प्रकाशवाणी केंद्र का एक श्रोता हूं। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आकाशवाणी का 90 वर्ष पूर्ण हो चुका है, जिसमें बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं मैं सभी श्रोताओं को देना चाहता हूं और इनके सभी आकाशवाणी केंद्र के कर्मचारियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इन 90 वर्षों में आकाशवाणी केंद्र ने सभी जगहों पर शिक्षा, विज्ञान, समाचार, मनोरंजन, लोकगीत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वह समाचार के क्षेत्र में हो, लोकगीत हो, या किसी जागरूकता अभियान या समाज में कोई जागरूकता फैलानी हो या सरकार की कोई भी नियम नीति को बताना हो, तो आकाशवाणी केंद्र के माध्यम से सभी जगहों पे सभी देश के कोने कोने में पहुंचाया गया है, जिससे बहुत लोग जागरूक हुए हैं, शिक्षित हुए हैं और विज्ञान के सारे जानकारियों को हमें बहुत बखूबी रूप से दिखाया गया है। ये हर गांव और शहर में आकाशवाणी केंद्र का रूप पहुंचा हुआ है

0: हम है राही प्यार के। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। समीर के बोल थे और नदीम श्रवण का संगीत था। और इसी के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
2: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
1: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
3: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
1: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
6: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
5: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
7: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
5: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
9: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए एक गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का दौर। यूले लव स्टोरीज, बनेगी अपनी बात, सी हॉक्स और घर जमाई, इन सीरियल्स में उन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी पहचान बनाई।

पर असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राजेंद्र।

2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, रामजी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू ही ये फिल्म बाद में रामजी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। रामजी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

0: 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।
1: जब

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सिक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

इसके बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

साल 2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

हाल ही के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें उन्होंने एक तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर। स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, लेकिन उससे पहले सुनिए आजादी का जय घोष, वंदे मातरम।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्री चरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए पूरे देश में। इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे आजादी का जय घोष वंदे मातरम, और लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में पहले हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में पत्थर के सनम इस फिल्म का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, मधुमति फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत है।

कार्यक्रम फिल्म संगीत में लीजिए। आप सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म का गीत। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं एच डी बर्मन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत में आज हमने आपको लता मंगेशकर के गाए हुए कुछ सुरीले और लोकप्रिय गाने सुनवाए। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था, FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता, गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पहले सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में ये गीत।

मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर हम तुमको न भूल पाएंगे। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में यह गीत अभी आपने सुना गुलदस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत। और लीजिए अब सुनिए राजेंद्र मेहता और नीना मेहता की आवाज़ में ये गज़ल।

गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गजल।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। इसका प्रसारण आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से किया जा रहा था। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ. जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्रीक्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कार्बन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत, तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 इयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास। हाउ बिग एन अचीवमेंट would do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak, but this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya, you know, we've changed the definition, because ab poverty ko pehle kaise define karte the itne rupaye roz ka. I think Niti Aayog came out with a very new and a promising definition कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच हैज बीन, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके, यू नो, टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देयर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव from the point of view that not that a person has a very huge bank balance, but he's able to afford and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, you know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just name all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया, और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती है वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए

0: जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की है, जो उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
1: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी कपड़ा और मकान है, और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं, आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की, वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है, और जैसे अभी बात हो रही थी अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर, लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
0: जी।
1: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
0: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव। देखिए गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं
0: बिल्कुल,
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबॉडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन दैट। टुडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है, and I think a lot of people said that startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas, and that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. And a lot of youngsters, and today just on startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
0: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel.
0: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers
0: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
0: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. You borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs. You know, you'll be surprised the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as a very, very active GDP.
0: In fact,
2: we did an

0: कैसे करूंगा करूंगी, ये तो बहुत मुश्किल होता है, कंपनी कैसे बनाएंगे, फिर सरकार इतने सारे टैक्सेस लगाती है, 17 टैक्सेस को मिला के जीएसटी जब आया, और जब से जीएसटी 2.0 आया है उसने तो ऐसा लगता है जीएसटी को, आई मीन पीपल हैव ओपन्ड देयर आर्म्स एंड एम्ब्रेस्ड इट, उससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
1: आपने जीएसटी की बात की, और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है, बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स। सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी बट आफ्टर दैट लास्ट ईयर वी सॉ द जीएसटी 2.0 ऑल्सो, हाउ हैव दीज टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स इन द पास्ट decade impacted middle class. So Tandon, what would you say to that?
2: देखिए इसमें एक और पहलू भी है
1: जी,
2: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर, तो टैक्स रिफॉर्म जो है आपने जिनके जिक्र किया उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है, तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग, तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है, और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा।
1: शरद जी, यू नो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज यू नो इनफैक्ट चेंज 4 टाइम्स, इट इज इंक्रीज 4 टाइम्स सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ यू नो द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस, सो व्हाट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास यू नो मच ईजियर एंड नॉट मोर than that, would you say that you know the fact that the government has made the process so easy, and if we look at the number of ITRs filed, in fact last year more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty, and it's a salute to the middle class.
0: All right, we call that a sabka vishwas. A government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting you know dynamics of this whole tax you know number which you spoke of. About 9 crore returns were filed. And you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about 1 lakh rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55-60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, it is the Indian consumption, Anubha, which is driving the growth of the country.
1: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
0: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
1: Financial inclusion?
0: Absolutely. You know, Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
1: Yes.
0: I think this has been transformational, and a lot of countries around the world now want to emulate that example. So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about I

0: have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
1: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahiye? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Janadhan Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
1: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
0: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया. बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
1: डिजिटल डिवाइड, जिसको
0: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था. बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे When I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead. It's pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. Prime Minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye COVID mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi. Agar ye connectivity nahi hoti, bachchon ka koi nuksan COVID mein nahi hua. Aaj bhi Pradhan Mantri ji, hum apne videshi mudra bachane ke liye, unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyun keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
1: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
0: जो काम किया है उसके आधार पर उन्होंने बोला. उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर. मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
1: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
1: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
0: Oh, it's done in a huge way because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. कि हम सारी उम्र में सोचता था कब मैं हवाई जहाज में बैठूंगा. आज मुझे लगता है आप अगर किसी भी हवाई यात्रा में जाए, आपको एक आम आदमी उसमें दिखेगा. अब वो ऐसी लग्जरी नहीं है. छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को बनाकर उनको कनेक्ट कर देना और चंद मिनटों में या घंटे में पहुंच जाना, जिसके लिए आप सारी रात की जर्नी करते थे. आपको याद होगा राजधानी और शताब्दी, अकेली ट्रेन हुआ करती थी जो कि प्रीमियम बोली जाती थी, जल्दी पहुंचना है. आज वंदे भारत लेके आप कुछ घंटों में एक जगह से दूसरी जगह और ऐसे कंफर्ट पहुंच रहे हैं, which is of international level. द थिंग्स वी यूज टू वॉच इंटरनेशनली के इस ट्रेन में टीवी भी होता है, इसमें रिक्लाइनिंग सीट्स होती है, आज वो मुझे लगता है आम आदमी के पहुंच में. सो आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट लग्जरी व्हिच यूज्ड टू बी कॉल्ड अर्लियर एज अ कंफर्ट एंड नेसेसिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री.
1: एंड यू नो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप जैसे बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, बी इट रोड्स, बी इट रेलवेज, बी इट यू नो एयरपोर्ट्स, जो एक्सपेंशन हुआ है, तो हमने देखा है कि हवाई यात्रा में जैसे भी आपने कहा कि बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. वंदे भारत जैसे हमारे पास वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, जहां 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, अब वो बढ़ के 160 हो चुके हैं, 225 तक. जो मेट्रो रेल का नेटवर्क है वो 26 शहरों में फैल चुका है. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं, ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है. अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं. अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है. इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है.
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही हैं उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड अनुभव रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे. देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है. क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं. क्योंकि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं. तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे अनुभव फ्रॉम वेयर वी वर.
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन. Women, you know, are the backbone of any middle-class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle-class women, which in turn, you know, have made the middle-class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं. अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है. इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत, ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे विमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होके कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहाँ से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहाँ दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
0: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है, और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
2: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
0: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं अनुभार होतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anup.